एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 और 13 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद विविध भारती से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और उसके तुरंत बाद होगा वंदनवार कार्यक्रम। रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भागीदारी

0: किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती,
3: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार।

आज का चिंतन। सुकरात का ये कथन है कि संसार में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने का सरल और निश्चित उपाय यही है कि मनुष्य वास्तव में जैसा है वैसा ही अपने आप को व्यक्त करे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 220। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता, श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाड़िक। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी आज आप सुनेंगे। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। सुबह 7 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम ही राहे प्यार के। सुबह 8:15 का समय है त्रिवेणी कार्यक्रम का और 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक।

सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर। इस कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण रात 9:30 पर होगा। सुबह 10:00 कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। कवि प्रदीप के सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग आपको सुनाया जाएगा। सुबह 11:00 कार्यक्रम होगा रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1:00 का समय है सुरीला सफर इस कार्यक्रम का और दिन में 2:00 सुनिए त्रिवेणी।

दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नागवी और दिन में 3 बजे का समय है सखी सहेली इस कार्यक्रम का। शाम 4 बजे सुनिए कार्यक्रम पिटारा, इसके अंतर्गत कार्यक्रम सेहतनामा, जीवन शैली और योग, इस विषय पर योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आपको सुनाई जाएगी। शाम 5 बजे कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने।

शाम 7 बजे सुनिए कार्यक्रम जयमाला और 7:45 पर एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में जिस फिल्म के गाने आप सुनेंगे उस फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने। रात 8 बजे कार्यक्रम हवा महल झलकी नीम हकीम, इसके लेखक हैं राजकुमार वाल्टर और निर्देशक हैं गोपाल सक्सेना। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और 9 बजे सुनिए आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम। रात 10 बजे का समय छाया गीत कार्यक्रम का है और 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 220।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विफल हो भरत जो और जैसा चाहे वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुन

कर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए। यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था। अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्रीराम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे यहाँ से आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:10 पर सुनिएगा हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। 7:40 पर समय रहेगा सुप्रभात का। रात 8 बजे सुनिएगा समाचार प्रभात। 8:15 पर सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।

निसार का समय रहेगा सुबह 11 बजे सुनेंगे एनसीईआरटी का अगला भाग। 11:30 पर सुनिएगा विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम रंग तरंग।

यादव महफिल कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12 बजे। गीतमाला आप सुनेंगे दोपहर 1 बजे। 1:05 पर सुनिएगा हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। 1:10 पर सुनिएगा गीतमाला कार्यक्रम। 2:15 पर सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार विविध भारती से। सदाबहार नगमों का समय रहेगा दोपहर 2:30 पर। विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आप सुनेंगे 3 बजे। शाम 5 बजे सुनिएगा कार्यक्रम एक कलाकार। शाम 6 बजे सुनेंगे हिंदी समाचार। कार्यक्रम रूपरेखा का समय रहेगा शाम 6:05 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। भक्ति संगीत का समय रहेगा 6:20 पर। युवा उमंग कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30 पर। खेती पर आधारित कार्यक्रम खेती किसाना से थी आप सुनेंगे 7 बजे। 7:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम सीरीज का 13वां भाग। 7:45 पर सुनेंगे मारे गांव। महफिल कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8 बजे। सरकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:30 पर। राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का समय रहेगा 8:45 पर।

विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9 बजे। रात 10 बजे सुनिएगा अपना मनपसंदीदा कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनर्प्रसारण। रात 11 बजे सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार। कल सुबह सभा की शुरुआत होगी प्रातः 5:55 पर। 6 बजे सुनेंगे आप राष्ट्रीय हिंदी समाचार। वंदन वार का समय रहेगा 6:05 पर। 6:45 पर कार्यक्रम रूपरेखा आप सुन सकेंगे। 6:55 पर संस्कृत समाचार का समय रहेगा। राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का समय रहेगा प्रातः 7 बजे। अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकेंगे 7:05 पर। हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे 7:10 पर। कार्यक्रम सुप्रभात आप सुन सकेंगे 7:40 पर। समाचार प्रभात सुनिएगा 8 बजे। विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:15 पर। आकाशवाणी हिसार से प्रसारित कार्यक्रम नमस्ते हिसार का समय रहेगा सुबह 10 बजे। NCERT का अगला आप सुनेंगे 11 बजे। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 11:30 पर। यादों की महफिल कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12 बजे। दोपहर 1 बजे सुनेंगे कार्यक्रम गीतमाला। हिंदी प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा 1:05। गीतमाला आप सुनेंगे 1:10 पर। राष्ट्रीय हिंदी समाचार का समय रहेगा

2:15 पर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे 2:30 पर दोपहर 3 बजे विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रम। शाम 5 बजे सुनिएगा अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम ई फरमाइश। कार्यक्रम रूपरेखा का समय रहेगा। 6:10 पर प्रादेशिक समाचार सुनिएगा। भक्ति संगीत का समय रहेगा 6:20 पर। युवा मंग आप सुन सकेंगे 6:30 पर। खेती पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी का समय रहेगा शाम 7 बजे। 7:30 बजे 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम महारे गांव। लोकमंच कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। खुला आकाश का समय रहेगा 8:30 पर। सुनिएगा राष्ट्रीय हिंदी समाचार। विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम रात्रि 9 बजे होंगे। व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे रात्रि 10 बजे सुनिएगा। रात्रि 11 बजे सुनिएगा राष्ट्रीय हिंदी समाचार।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अभी से थोड़ी देर बाद सुनेंगे आप संस्कृत में समाचार और उसके बाद सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: शिखरसम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुखवैश्विकविषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विकदक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृतचर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागम् अगृह्णन् फ्रांसदेशस्य नीसनगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फ्रांसदेशस्य यात्रायाः परिणामे विशेषसूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायाम् विदेशसचिवः विक्रममिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रम् 30-2000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखम् परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यम् महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिमबुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगम् सुदृढम् कर्तुमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य गौतमबुद्धनगरस्य जेवरनगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इण्डिगो एयरलाइन्स् संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानम् आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरु नगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानम् अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊ नगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270+ यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊ नगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्ववायुदिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायुपरिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जूनमासस्य 15 अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवाराज्ये 26-2000 वैश्विकवायुदिवससम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानाम् आईसीसी 20-प्रति-20 विश्वचषकक्रीडायां वर्मिंघम् नगरस्य एज्वेस्टन् नगरे ग्रूपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तानदलं 64 पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा

0: और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियोन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डबरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नई सुबह नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी सार कार्यक्रम लोक रंग के साथ। आज के कलाकार हैं मास्टर सतबीर भैंसवाली और साथी कार्यक्रम की शुरुआत में 11 आदमी।

0: कार्यक्रम की अगली रागनी भी इन्हीं आवाजों में।
1: ये रे चा पसंग ने

रंजक मग झगड़े टंटे बीते जाने कितने पे जन जन जन जन मैं पे एरे मात पैदा का मुरे का

अरे बाप कमाऊ हो चाचा दाऊ जब को ए छोरे ने ब्याई हो। अरे एक दो माई ओए एक दो भाई ओ जननी माई जब को ए नौकर जाइयो। अरे करे कमाए हाय तेरे भाइयो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हरियाणवी लोक रंग आकाशवाणी के एसआर केंद्र से। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सके हैं।
1: ये रे कौन मरे से किसकी आई, न्यो मरे जाना खेलन।

कुसर बदनामी नहीं धरे जब जब भीड़ पड़े प्यारे थे वो।

0: मानस की जग में
1: तेरा छोरेदार मानस की जग में
0: रे रे माटी उया करे मिल के घाटी करने आले ते या काटियो चाटी होया करे अंत समय में प्यारे काजी सौ सौ घाटी होया करे एक बार दसन होवे यार के न्यो तबियत

पर फूल के पास लगे कांटे या बात किसे ने भी वही नहीं।

0: मास्टर सतबीर भैंसवाली और साथी।
1: रे ऊंच की तैयारी तेरे याद की रबन के कटारी फो अल्लाह।

0: ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
1: What is it?

சொல்லலுக்கு

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।
1: राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
2: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
3: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
2: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
3: हर मंगलवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
4: अगर तुम्हारी आरजू एक कनीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
3: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
2: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
5: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
3: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
6: Will he be remembered as a great scientist, said Thomas Alva Edison।
2: कोई कला में उत्कृष्ट है?
3: तो कोई संगीत का शिरोमणि?
2: किंतु कोई है जो इन सबको ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
3: कार्यक्रम एक शख्सियत
2: हर सोमवार शाम 5 बजे
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

नमस्कार, सादर प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को हमारा स्नेह भरा सुप्रभात। नई सुबह की इस पावन बेला में जब सूरज की पहली किरण धरती को प्रणाम कर रही है, पंछियों की चहचहाट जीवन में आशा भर रही है, तब हम सब मिलकर मन, वचन और कर्म को पवित्र करने का एक सुंदर प्रयास कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं सुप्रभात रेडियो कार्यक्रम, जहां हर सुबह श्रद्धा, शांति और संस्कार आपके

0: द्वार तक पहुंचते हैं। आइए अब सुनते हैं मौसम और सुविचार नीलम से।
1: अब बारी है आपको मौसम के बारे में जानकारी देने की, तो चलिए सुनते हैं आज के मौसम की जानकारी। आज हिसार में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहने की संभावना है। श्रोताओं, मौसम में बदलाव बना हुआ है। दिन में धूप खिली रहेगी, थोड़े बहुत बादल छाने की संभावना है। श्रोताओं, सुनते हैं आज का सुविचार।

आज का सुविचार। हर कठिनाई एक नई शुरुआत का संकेत है। इसका मतलब है, जब जीवन में कोई समस्या, रुकावट या बुरा समय आता है, तो यह असल में ब्रह्मांड का इशारा होता है कि अब कुछ नया और बेहतर होने वाला है। इसीलिए धैर्य बनाए रखें और जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, सदैव आगे बढ़ते रहें।

श्रोताओं, श्री रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन जीने की कला है। इसकी हर चौपाई, हर दोहा हमें धैर्य, मर्यादा, प्रेम और कर्तव्य का मार्ग दिखाते हैं। अब हम आपके लिए श्री रामचरितमानस के पावन पाठ को करने जा रहे हैं। आप जहां भी हों, जो भी कर रहे हों, कुछ क्षण रुकिए, मन को शांत कीजिए और इन दिव्य शब्दों को अपने अंतर्मन में उतरने दीजिए।

देखि प्रीति सुनि बचन अमूले एव मस्तु करुणानिधि बोले। आपो सरिस खोजों कह जाई नृप तव तनय होब मैं आई। अर्थात राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सत रूप ही बिलोकी कर जोरे देवी मागु बरु जो रुचि तोरे जो बरु नाथ चतुर नृम मागा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। अर्थात शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। हे नाथ चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु वो मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठि होती ढिठाई जदपि भगत हित तुम्हाई सुहाई तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकलुर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि भक्तों का हित करने वाले वो ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। अस समझत मन संशय होई कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई जे निज भगत नाथ तब अहि जो सुख पावहि जो गति लहहि। अर्थात ऐसा समझने में पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही सत्य है। हे नाथ आपके जो निज जन हैं वो जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं वो उत्तम है। सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण सनेहु सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देहु।

श्रोताओं, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान की आराधना तो हर कोई करता है। जो लोग सच्चे दिल से प्रभु की आराधना करते हैं तो प्रभु सदैव उनकी सहायता करते हैं। भगवान माँ जैसे हैं, डांटेंगे भी और रुलाएंगे भी, पर गिरने नहीं देंगे। डांट में भी प्यार छुपा होता है। श्रोताओं, पग पग पर प्रभु हमारे साथ रहते हैं। जब भी हम खुद को समस्याओं से घिरा हुआ महसूस करते हैं, तब प्रभु का स्मरण हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हमारा मन शांत हो जाता है, तब हम अच्छा महसूस करते हैं। श्रोताओं, बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। चलिए सुन लेते हैं दिल छू लेने वाला एक प्यारा सा भजन। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पर सहारा मिलता है।

श्रोताओं, अब समय हो चुका है एक प्रेरक प्रसंग का, तो चलिए सुनते हैं। एक बार एक युवा बहुत निराश मन से एक संत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी, आवाज में हताशा और शब्दों में शिकायतें। उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहा।

शायद मेरी किस्मत ही कमजोर है। संत ने उसे ध्यान से देखा और पास पड़े एक दीपक को जलाया, फिर पूछा, बताओ यह दीपक अंधेरे को क्यों हरा पाता है? युवा बोला, क्योंकि इसमें रोशनी है। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही उत्तर है तुम्हारे जीवन का। जब भीतर विश्वास की रोशनी जलती है तो बाहर

वन में सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। कुछ चीजें हमें इंतजार करना सिखाती हैं और कुछ संघर्ष करना। लेकिन जो इन दोनों को स्वीकार कर लेता है वही सच में आगे बढ़ता है। युवा की आंखों में अब निराशा नहीं, एक नई चमक थी। और यही सीख है हमारे लिए भी। अगर आज रास्ता कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल गलत है। बस धैर्य रखिए, अपने कर्म से जुड़े रहिए और भरोसा रखिए कि हर सुबह कुछ नया लेकर आएगी।

मैं हूं नीलम, आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई सुबह, नए विचारों और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए सुप्रभात।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसका प्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से होगा। उसके तुरंत बाद अंग्रेजी समाचार प्रसारित होंगे।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दे?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंगहम के एडबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
3: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरी

0: क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
0: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लोचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय

0: एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार

0: प्रेस रुकेगी नहीं। कहा, देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार, अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है, आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा, विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है, एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच। हिंदुस्तान लिखता है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा, वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, मनुष्य के जीवन में पैसे का बड़ा महत्व है जो बढ़ता ही जा रहा है, और पैसे की बढ़ती अहमियत ने हर इंसान को कमाई के लिए दौड़ने पर मजबूर कर दिया है।

0: अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम धन अर्जित करते हैं। जरूरतें पूरी होने पर लोग जुट जाते हैं अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने में, जिसके लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है, और इसी चक्कर में वे अपने करीबी लोगों से दूर होते जाते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर पैसे का गुरूर कतई अच्छा नहीं है।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या। काहे पे

जरूरतें पूरी करते करते हम अपनी इच्छाओं को पैसों से पूरा करने में लग जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता। ऊंची अट्टालिका में रहने वाला नर्म बिस्तर पर भी रात भर सो नहीं पाता, और दिन भर मेहनत करके एक इंसान पत्थर की सेज पर गहरी नींद सोता है। एक संतोषपूर्ण जीवन ही समृद्ध जीवन है। मन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। शांत मन किसी भी परिस्थिति में गुनगुनाता रहता है और आनंद से भरा होता है।

0: कच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की

प्रस्तुति कार्यक्रम चित्रलोक। सबसे पहले आपको कबीर सिंह फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में, गीत और संगीत मिथुन का।

दोस्तों आज है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, यानी कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। हर साल 15 जून को ये दिन मनाया जाता है और ये दिन बुजुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए समर्पित है। वृद्ध लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उनकी उपेक्षा जो होती है उसको समाज में उजागर करना और उनको सम्मान देना, उनकी गरिमा को सुनिश्चित करना, ये इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है। कुछ और बातें हम आगे करेंगे, अभी आपको सुनवाते हैं MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस फिल्म का गाना पलक मुच्छाल की आवाज में, मनोज मुंतशिर के बोल, संगीत है अमाल मलिक का।

साथ ब्रदर्स जुबिन नौटियाल और धोनी भानुशाली की आवाजों में लीजिए अब सुनिए कुमार का लिखा हुआ गाना, मीत ब्रदर्स का संगीत और फिल्म का नाम मर जावां।

ब्रेक के बाद अब चित्रलोक कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मलंग फिल्म का गाना। मिथुन फिएट और अरिजीत सिंह की आवाजें, सईद कादरी के बोल, संगीत है मिथुन का।

जैसा कि हमने आपको बताया कि आज बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। 15 जून को ये दिन मनाया जाता है और बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो वो हमारे घर के आधार स्तंभ होते हैं। उनके अनेक प्रयासों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से हमारा घर बना है या इतना आगे बढ़ा है या उसने इतनी प्रगति की है। जब वही बुजुर्ग जब वो बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो अक्सर उनकी अनदेखी होती है, कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। ये दुर्व्यवहार शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक और आर्थिक रूप से भी हो सकता है। कई बार उनकी बहुत घोर उपेक्षा की जाती है, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

इसकी वजह से वो दुखी हो जाते हैं और कई बार उन्हें बहुत पीड़ा भी होती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनजर इन परिस्थितियां ना आए, इसी बात को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो हमें ये बात सुनिश्चित करनी है कि हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं या समाज में जो बुजुर्ग हैं उनके साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनकी गरिमा, उनके स्वतंत्रता और उनके अधिकार बने रहें और वो एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। तो आज है बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम जारी है चित्रलोक। अब आपको सुनवाते हैं लुका छुपी फिल्म का गाना। करण सहंडी की आवाज में निर्माण का लिखा हुआ गाना, तनिष्क बागची और गोल्ड बॉय का संगीत।

आइए अब सुनते हैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया। इस फिल्म का गाना अमाल मलिक और श्रेया घोषाल की आवाजें, शब्बीर अहमद का लिखा हुआ गाना, अमाल मलिक का संगीत।

कह देते हाँ जी हाँ कबूल है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए एक विलेन। इस फिल्म का गाना अंकित तिवारी की आवाज में, मनोज मुंतशिर के बोल, संगीत है अंकित तिवारी का।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

सुनिए एक खुशखबरी, कहीं आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं स्त्री फिल्म का गाना, आस्था गिल, सचिन संघवी, जिगर सरैया और दिव्य कुमार की आवाज से वायु को लिखा हुआ गाना सचिन जिगर का संगीत है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहार खिली गली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लव यात्री फिल्म का ये गाना है। देव नेगी, यो हनी सिंह इनकी आवाजें हैं, शब्बीर अहमद यो हनी सिंह और होमी दिल्लीवाला इनका लिखा हुआ गाना, तनिष्क बागची का संगीत है।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना बागी फिल्म का गाना मोलाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स की आवाजों में, कुमार का लिखा हुआ गाना, मीत ब्रदर्स का संगीत।

0: जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
1: संगीतकार ओपी नैयर।
0: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
1: ऐसी अद्भुत यादें।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है।

वो पास रहे या दूर रहे, उनकी आवाज जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है। गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की।

सुरैया बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गई। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।

एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रही।

माना जाता है देवानंद ने सुरैया को टूट कर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्मरण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत है, हाँ मैंने उन्हें प्यार किया था, इसे मैं अपने जीवन

0: 1948 में देवानंद की फिल्म विद्या में वे देवानंद की नायिका बनी।
1: किनारे किनारे चल

रवैये की आवाज में जहाँ एक तरफ दर्द है वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है सुनिए।

जब देवानंद की फिल्म अफसर बन रही थी तो सचिन देव बर्मन ने सुरैया के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एस डी बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सबके लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

0: के चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थीं, सुनिए।
1: सन 52 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पेक की फिल्में मुझे बहुत पसंद है, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पेक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पेक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी, मगर जब नींद टूटी तो ये हकीकत थी।

रैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, दलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए।

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात यह है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली ये पहली फिल्म थी।

0: दोस्तों, क्या आपको मोती महल फिल्म का ये गाना याद है, मोटर बिगड़ने का?
1: कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में।

ஒரு ரயா.

0: रास्ते में।
1: सन 1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम।

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साए में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रोग्राम 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम बोल रहे हैं एफएम हिसार। अभी आपका मनपसंद प्रोग्राम नमस्ते हिसार कुछ ही पलों में आपके सामने प्रस्तुत होगा और प्रस्तुत करने वाले आपके दोस्त रहेंगे कुमार रोहित। कृपया प्रोग्राम की प्रतीक्षा कीजिए।

दोस्तों आदाब सलाम नमस्ते नमस्ते हिसार कार्यक्रम में मैं आपका दोस्त कुमार रोहित आपका खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप, सुनाइए। दोस्तों कैसी चल रही है जिंदगी? बच्चे तो गर्मियों की छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं और आप अपने दफ्तर पहुंच रहे होंगे या रास्ते में होंगे या पहुंचने वाले होंगे, लेकिन आप जहां कहीं भी रहें आपके इस सफर में आपका हम सफर है आकाशवाणी, हर पल आपके साथ, और जो आपको न केवल मनोरंजन की सड़क पर ले जाएगा, मनोरंजन की ओर ले जाएगा, बल्कि आपके ज्ञान के संवर्धन में भी आपका हाथ बटाएगा। और इस कार्यक्रम में मैं अगले एक घंटे आपके साथ रहूंगा, रोहित कुमार, कुमार रोहित।

0: दोस्तों, आपके इस कार्यक्रम में हम कुछ खबरों की चर्चा करेंगे। आज है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, यानी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार साक्षरता दिवस। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आपके मनपसंद जो सेगमेंट होते हैं, क्विज, एक शख्सियत और कुछ रोचक तथ्य भी आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए 102.3 मेगाहर्ट्ज पर FM हिसार के साथ।
1: तीसरा और अंतिम भाग।

0: दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक सुंदर से गीत के साथ, जो न केवल आपकी यात्रा को और अच्छा बनाएगा, बल्कि आपको उस दुनिया में ले जाएगा, एक दार्शनिक दुनिया जो आपको ये बताती है कि जीवन क्या है, जिंदगी क्या है।
1: मुझे याद दिलाओ, मित्र जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों के साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे।

जी हाँ दोस्तों, सही बात है। जिंदगी को हर पल में जिया जाए। हमें नहीं मालूम कि आगे क्या होना है, क्या हो सकता है। जो भी पल हमें मिले, क्यों ना उस पल में अपना सर्वस्व लुटा दें, सब कुछ अपना उसी में ही खो जाएं और हर पल को ऐसे संजोए जैसे हमारा आखिरी पल है। आप हैं मेरे साथ कुमार रोहित के साथ, और अब आपको लिए चलते हैं शहर की कुछ खबरों की ओर। शहर की बढ़ती भीड़ से निजात दिलाने के लिए HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने दो अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत सेक्टर 14 से नेशनल हाईवे 9 तक रायपुर रोड तक 4 लेन बनाया जाएगा। आप देखते हैं कि कितनी भीड़ हमारे शहर में फैल रही है। यह रोड दर्जनों गांवों का शहर में प्रवेश

पार होगा। साथ में ही सेक्टर 14 और 14 पार्ट 2 तथा सेक्टर 33 को भी जोड़ने वाला एक मास्टर रोड जो है वो पूरा किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। उसका कुछ हिस्सा जो है रह गया था, इस हिस्से का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस रोड से तीनों सेक्टरों का जुड़ाव सीधा नेशनल हाईवे 9 से हो जाएगा। दोस्तों एक और खास आपको जानकारी दे दें कि आज से BLO बूथ लेवल जो ऑफिसर हैं वो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण हेतु आपके घर आएंगे और मतदाता सूची के सत्यापन में ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रोताओं आपको बताते चलें कि हिसार विधानसभा में कुल 186,415 मतदाता हैं, जिनमें से 1,02,651 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है तथा 83,764 लोगों की शेष है। आप सब जानते हैं कि जो सरकार का काम है उसके लिए सरकारी कर्मचारी बहुत अपनी मेहनत से, परिश्रम से और ईमानदारी से कार्य करते हैं। आपको सिर्फ उनको सहयोग देना है और जो मतदाता सूची में जो छाट काट चल रही है और उसको सही बनाने का काम चल रहा है, चलिए आप उसमें अपना योगदान दीजिए। योगदान सिर्फ इतना हो सकता है कि कोई कर्मचारी आए तो उससे वही पानी पूछ लीजिए, गर्मी चल रही है उससे चाय पानी पूछ लीजिए और जितना सहयोग हो सकता है आप सहयोग कीजिए।

0: अच्छा, मौसम की बात करें तो आप जैसे देख रहे हैं कि कल जितनी गर्मी थी आज उतनी गर्मी नहीं है। मौसम की बात करें तो मौसम में परिवर्तन साफ नजर आ रहा है। आज से आगामी 17 तारीख तक जो है आंधी व बूंदाबांदी के आसार हैं। साथ में एक और खबर में की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शहर के जितने भी पार्क हैं, अब नगर निगम ने ये निश्चय किया है कि पार्कों की सूरत जो है बिल्कुल बदलने वाली है। पार्कों की बदलेगी सूरत। पार्कों में ओपन जिम, झूले, लाइट पोल, डस्टबिन, बेंच इत्यादि नगर निगम लगाएगा। और आप सब जानते हैं कि किसी भी शहर की जो पहचान होती है उनके सार्वजनिक स्थल होते हैं, और सार्वजनिक स्थलों में हमारे पार्क प्रमुख होते हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, हमें अच्छा भी तो लगता है। लेकिन आप ये देखिए ना, इन झूलों को, इन बेंचों को, इन पौधों को कौन नुकसान पहुंचा रहा है भाई? इनको यहाँ घूमने वाले ही तो पहुंचा रहे हैं। तो नगर निगम तो अपना काम कर ही रहा है, क्यों ना हम भी अपनी जिम्मेवारी उठाएं और कुछ ना कुछ योगदान अपना भी हम पार्कों के प्रति, अपने सार्वजनिक स्थलों के प्रति दें।
1: सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को, या फिर

जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी हर पल आपके साथ 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हिसार और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्ते हिसार अपने दोस्त कुमार रोहित के साथ। तो बताइए कैसा लग रहा है अब तक का आपका प्रोग्राम, आपका अपना प्रोग्राम, क्या आप इसका लुत्फ उठा रहे हैं, अच्छा लग रहा है या नहीं, कृपया हमें बताइएगा।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आपके मनपसंद सेगमेंट की ओर और आपसे पूछ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि हर बार हम नमस्ते हिसार में आपसे पूछते हैं दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिससे ये भी पता चलता है कि हमारे श्रोता जो हैं क्या उस चीज़ से जुड़े हैं जो बहुत सबसे परम आवश्यक है, सामान्य ज्ञान। और इसका उत्तर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। आपको बहुत सारे श्रोता हमारा नंबर जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी दोहरा रहा हूँ, नंबर है 972-925-3272। दोबारा एक बार सुन लीजिए, 97-292-53-272।

आपको पता ही है कि जो इस इन प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले देगा उसका हम मनपसंद गीत भी सुनवाएंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए प्रश्नों के लिए, और सबसे पहले जो जवाब देगा वो सुन पाएगा अपना मनपसंद गीत। आपने क्या करना है, प्रश्नों के सही उत्तर लिखकर भेजने हैं, साथ में अपना नाम, अपने दोस्तों का नाम, अपने परिवार के सदस्यों का नाम तथा अपना मनपसंद गाना भी भेजना मत भूलिएगा। तो पहला सवाल है हमारा कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। पहला सवाल कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई, तथा साथ में ही मैं दूसरा सवाल भी दोहरा रहा हूं कि एक फिल्म आई थी MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में MSD महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाने वाले एक्टर का आपने नाम बताना है। तो लिख लीजिए दो सवाल, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई, तथा फिल्म MSD दी अनटोल्ड स्टोरी में महेंद्र सिंह धोनी का किरदार किस एक्टर ने निभाया है। आप भेज सकते हैं अपने उत्तर 97-292-53-272 पर।

0: चिड़िया मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना
1: बस यही
0: अच्छा।
1: चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखे, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: दादी कौन सा प्लांट है?
8: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
9: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
7: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
9: क्यों?
7: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
9: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
10: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

दोस्तों आप हमसे जुड़ चुके हैं 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम हिसार से, और प्रोग्राम चल रहा है आपका मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते हिसार। और आज नमस्ते हिसार में मैं हूं आपका दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट कुमार रोहित। दोस्तों पिछले दिनों एक अजीब वाकया मेरे सामने आया। हुआ यूं कि मैं और मेरा दोस्त कहीं जा रहे थे और एक हमें हमारे दोस्त के किसी तीसरे दोस्त से, यानी कि किसी और दोस्त से मिलना था। दोस्त मैं अपने दोस्त अनिल के साथ जा रहा था सुधीर के घर। तो सुधीर के घर गया जब, तो हमने पूछा, सारी बातें हालचाल सब कुछ पूछा कि भाई क्या कैसा चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो अनिल ने सुधीर से कहा, क्या अंकल आंटी तुम्हारे साथ रहते हैं? दोस्तों अनिल ने सवाल किया कि क्या अंकल आंटी तुम्हारे साथ रहते हैं? जो सुधीर ने जो जवाब दिया वो आज तक हमारे जहन में बसा हुआ है। सुधीर ने बोला कि मम्मी पापा हमारे साथ नहीं, मम्मी पापा हमारे साथ नहीं, बल्कि हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं। कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि लफ्जों का, अल्फाज का हेरफेरी तो है, लेकिन सारी भावनाएं, सारे इमोशंस बदल जाते हैं कि हम मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, उनके साथ अपने जिंदगी का सफर यापन कर रहे हैं। वास्तव में दोस्तों की सलाम है ऐसी तहजीब और तरबियत को जो ये समझते हैं कि यदि बड़े हैं तो हमारा सब कुछ है, बुजुर्ग हैं तो सब कुछ है, ये समाज है, हम हैं। हमारा जो उत्पत्ति का जो बीज है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, चलना किसने सिखाया, कौन है जो हमें आगे बढ़ा रहा है, सब कुछ बुजुर्गों ने ही तो किया है। माता पिता और समाज के जो बड़े हैं उन्होंने ही तो किया है। तो दोस्तों आज 15 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। ये दिवस यूनेस्को ने क्यों मनाना शुरू किया, आखिर इसकी आवश्यकता क्या हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे और करते रहें।

0: जाने कैसी कैसी ऐसी चीजें कि हमारे सामने ना आए। बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, बुजुर्गों के प्रति जो मन में एक लोगों का जो दुर्भावनाएं हैं वो कैसे नष्ट होंगी, कैसे खत्म होंगी, ये बात विचारणीय है। कि आइए हम सब विचार करते हैं और देखते हैं कि बुजुर्गों को हम समाज में कैसे सम्मान दिला सकते हैं। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, इस पर बातें हमारी जारी रहेंगी, चर्चाएं जारी रहेंगी। आप भी अपने बुजुर्गों के बारे में क्या सोचते हैं, माता पिता के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या सोचते हैं आप कि समाज उनको उतना सम्मान दे पा रहा है? अगर नहीं दे पा रहा तो क्या कारण है, और किस तरह से इससे हम निजात पा सकते हैं कि ये जो भयावह समस्या दुर्भावना की, दुर्व्यवहार की, इससे हम कैसे जो है इसको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं?
1: मैं देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह, सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।

दोस्तों, आप हैं हमारे साथ आकाशवाणी हिसार पर और हम बात कर रहे थे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार साक्षरता दिवस के बारे में, जो हर साल जून मास की 15 तारीख को मनाया जाता है। सच बात तो ये है कि बुजुर्ग उस दरख्त के जैसे ही हैं जो अपना सब कुछ अपनों को लुटा देते हैं। वो कहते हैं ना कि मुनव्वर राणा का शेर है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। दोस्तों, इन बुजुर्गों के हालात बड़े ही आजकल दयनीय हो गए हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी स्तरों पर इनको कुछ ना कुछ अवहेलना का शिकार हो रहे हैं ये लोग, और कौन कर रहा है, हम ही तो हैं करने वाले। वास्तव में आज जरूरत है कि आपसी रिश्तों को समझा जाए, देखा जाए कि जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है, हम भी तो उनको कुछ ना कुछ दें, कुछ ना कुछ अपना ध्यान दें, समय दें। बुजुर्ग कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हरेक जो पुरानी पीढ़ी है वो नई पीढ़ी के साथ कदम ताल मिलाकर चले। वो कहा है ना कि तो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हैं तो क्या तुम हो। जब आपस में मिलकर चलेंगे तभी तो बात बनेगी ना। अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति समझ नहीं होगी, रिश्ते जो हमें फर्श से अर्श तक ले जाते हैं, रिश्ते जो हमें एक नई दुनिया दिखाते हैं, जो रिश्ते जो हमें एक ऐसी जंजीर से, ऐसी डोर से बांधते हैं जो अटूट है, जो कभी नहीं टूटते, इन्हीं रिश्तों को तो संभालना है भाई, इसलिए इन्हीं रिश्तों का तो ख्याल रखना है। तो आइए आज हम प्रण लें कि ना केवल अपने घर के बुजुर्गों का, बल्कि समाज में जो नींव के पत्थर हैं ये हमारे बड़े बूढ़े, इनका ख्याल रखेंगे, इन पर ध्यान देंगे, और तो और ज्यादा अगर नहीं कर सकते तो इनकी बात सुनेंगे। भाई वो बात अपनी बताने को तरस रहे हैं, तो जाइए उनके पास बैठिए। दूसरा, इस पुरानी पीढ़ी को, इन बुजुर्गों से भी ये कहूंगा मैं कि भाई आप भी इनको समझिए। ये नई पीढ़ी जो है, ये पंख खोल कर उड़ने वाली पीढ़ी है। आप अपने पिता जैसे नहीं थे तो ये आपसे थोड़ा अलग होंगे, आपसे थोड़ा बेहतर होंगे, तभी हमारा जो है ये समाज अच्छा बन पाएगा, तभी जो है एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के साथ हाथ में हाथ डालकर, कदम से कदम मिलाकर चल पाएगी। और ये जो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार साक्षरता दिवस है ना, ये तभी संभव है, ये इसका उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब दोनों पीढ़ियां, तीनों पीढ़ियां जो हैं आपस में एक दूसरे को समझेंगी, बातें करेंगी और आगे चलेंगी।

श्रोताओं, हमने आपसे दो सवाल किए थे। पहला सवाल था कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। सही जवाब है 8 जून 1936। और ये हम अभी हमारा जो रेडियो है 90 साल पूरे कर चुका है। तो दूसरा सवाल था कि एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म में धोनी का किरदार किसने निभाया था। तो सही जवाब है सुशांत सिंह राजपूत ने। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ। ये हैं कस्बा बराड़ा जिला अंबारा हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरप्रीत, गुरशब्द सिंह राहुल। और साथ में ये हैं हमारे साथी गगनदीप थांती, तृप्ता कुमारी थांती, डॉक्टर प्रियंका थांती, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी। और ये हैं हमारे गांव शेरड़ा, तहसील भादरा से, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। इन मित्रों का क्या नाम है, मंटू शर्मा जी हैं ये। और इसके बाद जो सही जवाब दिया है नरेंद्र सिंह नेगी, वीणा नेगी, डोगरा।

मुल्ला हिसार से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद गांव हांडी खेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। और जेवरा हिसार से हमारे श्रोता साथी हैं वीरेंद्र भयान, सुरेंद्र भयान, शमशेर भयान, मनोज भयान, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। संदीप झुरिया, मुकेश तंवर, बलराज इंदौरा, भूषण आरती, राजेश गुजर और अमित शर्मा ने भी सही जवाब दिया है। ये जीजेयू हिसार से हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और गांव पैंतावास कला, तहसील और जिला चरखी दादरी से उमेश सांगवान ने भी सही जवाब दिया है। गांव नलोई, तहसील शिवानी मंडी, जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक व वेदांश, ये भी दोनों सवालों का जवाब इन्होंने सही दिया है। और यही हमारे जो साथी हैं सबसे पहले जवाब देने वाले बने हैं, तो इनकी पसंद जो है फिल्म दर्द, और गीत बहुत अच्छा गीत है, न जाने क्या हुआ लता जी ने गाया है, इनकी पसंद पर पेश करते हैं इनका मनपसंद गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

102.3 MHz पर हम बोल रहे हैं FM हिसार से, और दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है नमस्ते हिसार। दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये शेर माकूल जान पड़ता है हमारे आज की शख्सियत पंडित हरजी राम शर्मा जी के लिए। हरजी राम शर्मा जी जो केवल और केवल 43 साल जिए, और इन 43 सालों में उन्होंने ऐसा काम कर दिया, वो एक मील का पत्थर साबित हुए। 1914 में उत्पन्न हुए, 1957 में चले गए, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी शिक्षा की नींव छोड़ गए, एक ऐसा दीपक छोड़ गए जो न केवल आज बल्कि आने वाली सदियों तक हमें प्रेरित करता रहेगा। आपने सुना ही होगा ना पंडित हरजी राम शर्मा जी का नाम, जिनके नाम पर ही हरजी राम हिंदू हाई स्कूल है। आप क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं हरजी राम?

0: स्कूल के बारे में आपकी क्या यादें हैं, कृपया हमें व्हाट्सएप कीजिए, बताइए कि आपकी कौन कौन सी यादें उनसे जुड़ी हैं। ऐसे ऐसे महान शख्स हमारे जिला हिसार में पैदा हुए हैं जो न केवल आज की पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों वास्तव में बुजुर्ग जो चले गए हैं, जो हैं और जो आने वाले समय में हम बुजुर्ग होंगे, उनसे हम प्रेरणा लें, प्रेरित हों, तभी हमारी बात बन पाएगी। और साथ में मैं जाते जाते आपसे एक और बात करना चाहूंगा कि आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या कोई दोस्त आपसे ये पूछता है कि इन दिनों आप क्या पढ़ रहे हैं? तो दोस्तों किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं और किताबों ने ही तो हमारे लिए संसार को खोला है। तो बताइए, व्हाट्सएप कीजिए मुझे, हमें व्हाट्सएप कीजिए आकाशवाणी हिसार पर कि आजकल आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, पिछले किस किताब ने आपको प्रेरित किया और किताबों के पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। वास्तव में इतना फायदा है कि मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तनाव कम होता है भाई, हमारी शब्दावली और जो अल्फाज हैं वो बढ़ते हैं, ध्यान लगाने की क्षमता भी बढ़ती है। तो पढ़ते रहिए किताब। किताबों का एक ऐसा संसार है जो न केवल हमें बल्कि छोटे बच्चों को भी प्रखर करता है। किताबें सच्ची साथी हैं। किताबों पर बात कीजिए ना, एक बनाइए एक कोना घर का, इतना बड़ा सा हमारा घर है, एक कोने में किताबें रखिए। और इसी बात के साथ मैं आपका दोस्त और इस कार्यक्रम नमस्ते हिसार का होस्ट कुमार रोहित आपसे लेता हूं विदा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार और इस कार्यक्रम को पेश कर रहे थे कुमार रोहित। हम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम एन

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व बिमरेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है, भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है, तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोवा की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोवा की पैदावार सबसे अधिक होती है।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
3: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
3: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
2: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: के पेड़ों की घनी छाओं में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर बहुत ग्यारह हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
3: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे।

0: दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओ,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहाड़ा सुना।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अपो, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है?
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
6: अपू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
6: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?

0: उसका दम घुट रहा था।
1: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
1: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
1: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
1: हाँ हाँ बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
1: हाँ हाँ
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
1: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
2: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
2: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो?
1: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
1: क्या किसी को कोई शक नहीं?
2: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
2: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
2: पैसे।
1: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
2: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
2: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी नोटिस है।
1: लो।
0: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
2: 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
2: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
1: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
1: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
2: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों एक एक करके आओ,
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
2: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
2: जॉर्ज को साथ लेकर चलो तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
2: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे।
1: वो देखो,
0: वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा।

0: उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़ कर माँ के गले लग गया।
3: माँ!
4: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
4: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
4: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
0: पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
4: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
2: बुरे कंचे हैं, है ना?
4: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
2: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?

0: बहुत अच्छे लगते हैं।
1: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
2: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहारें खिली गली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं काबुल एक्सप्रेस, इस फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है राघव सचर ने और संगीतबद्ध किया है राघव सचर ने। इस गीत को लिखा है आदित्य धर ने।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में सुनिए नक्शलायलपुरी का लिखा ये गीत, ललित सेन ने सुरों में ढाला है और एल्बम का नाम मेरी चुनर उड़ उड़ जाए।

भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

लकी अली का गाया गीत आपने सुना, उन्हीं के संगीत निर्देशन में सईद असलम के बोल थे और सिफर था एल्बम का नाम। और आइए अब आपको सुनवाते हैं तू ही मेरे रब की तरह है। इस एल्बम से गीत सईद कादरी के बोल है और गोल्डी का संगीत।

आज का मिश्र संगीत का ये कार्यक्रम रंग तरंग अब यहीं पर संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: बड़ी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूशनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हुरमुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: हुरमुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइन माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवंबर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू रामवन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मोंटेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का आगाज कर रही हूँ मैं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। लीजिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के मुकेश की आवाज में ही गीत है। फिल्म का नाम है आनंद, गुलजार के बोल हैं और सलील चौधरी का संगीत। आइए आपको बता दें कि जैसे कि आज जो हम थीम ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कहते हैं। कहते हैं कि सपने ही वो रंग हैं जो हमारी आंखों में बसकर जीवन को नई दिशा देते हैं। कुछ सपने मुस्कान बनकर आते हैं तो कुछ उम्मीदों का दीप जलाते हैं और कुछ हमें अपने प्रियजनों की यादों से जोड़ देते हैं। आज के इस यादों की महफिल कार्यक्रम में हम सुनेंगे ऐसे ही मधुर गीत जिनमें सपनों की दुनिया बसी है। आइए चलते हैं ख्वाबों और सुरों के इस खूबसूरत सफर पर। तो लीजिए, जैसा कि आपको बताया, मुकेश का गाया गीत आनंद फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं।
1: मैंने

सपनों की खास बात क्या है जानते हैं साथियों? खास बात यह है कि शायद जिन लोगों को अब हम असल जिंदगी में नहीं देख सकते, या फिर ऐसी कुछ हमारी महत्वाकांक्षाएं जो हमारी असल जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती हैं, वो कहीं ना कहीं हम सपनों के जरिए उन खुशियों को पा लेते हैं, उन लोगों से मुलाकातें कर लेते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए, और सपनों में हमें पता भी नहीं चलता कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो सपना है या सच, हमें तो वो सच ही लगता है। इसलिए सपने हमेशा ही अच्छे लगते हैं, तब तक जब तक वो खुशनुमा सपने हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं झुक गया आसमां। इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। कौन है जो

मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में

रोशन रहेगा। रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आज का यादों की महफिल कार्यक्रम केंद्रित है सपने इस थीम पर। तो आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। और आइए हम आपको सुनवाते हैं राजेश रोशन और अमित खन्ना का लिखा ये गीत। धुन बनाई है राजेश रोशन ने, आवाज है किशोर कुमार और मन्ना डे की, फिल्म का नाम मक्कार।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का आपने सुना अनुराधा पौडवाल और में रचना थी और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और वाडकर की आवाजें हैं, रचना है गुलजार।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये गीत सुनिए, जिसे रचा है संजय छैन ने, जतिन ललित का संगीत है और इस गीत ये गीत है फिल्म खूबसूरत से।

लक बाई चांस इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना है शंकर महादेवन की आवाज में। बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अजय अतुल का संगीत।

तो साथियों, सपनों से सजे इन गीतों का ये सफर यहीं पर विराम लेता है। उम्मीद है मधुर धुनों ने आपके मन में भी कुछ खूबसूरत ख्वाब जगा दिए होंगे। फिर मिलेंगे नई थीम और नए गीतों के साथ। अब दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

0: सुरीला सफर ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आज आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, आज के सुरीला सफर इस कार्यक्रम की पोस्ट फेसबुक पर काफी पहले आ चुकी है और आप सभी के कमेंट्स भी आना शुरू हो ही गए हैं। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। आज की इबारत को आपने पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथियों, एक बार आज की जो इबारत है उसे फिर पढ़ देते हैं। हो सकता है कि आज हमारे कुछ साथी हैं जो फेसबुक पर नहीं जुड़ पाए हो, तो उनके लिए हम एक बार इबारत पढ़ देते हैं। आज की इबारत है, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है, पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: पांच पांच लाख रुपए, बाकी दुकानों के मालिकों को दो दो लाख रुपए और जली रेहड़ियों के मालिकों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अग्निकांड में तबाह हुई दुकानों का निरीक्षण करने के उपरांत प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात के दौरान ये घोषणा की। मुख्यमंत्री अग्निकांड में मारे गए कपिल, सौरभ व अमन के घर भी गए और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। शहरी स्थानीय निकाय के रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित दुकानदारों को अलग से मुआवजा दिया जाएगा। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प का ही देन है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दी गई। उनके नेतृत्व में देश में व्यापक बदलाव आए हैं। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह रविवार को भिवानी के गांव सुहासड़ा में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने आमजन का आह्वान किया कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए वो भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। सांसद ने कहा कि 2014 से पहले और बाद के भारत का अध्ययन करने से पता चलता है कि इन 12 वर्षों में क्या बदलाव आया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कल देर शाम फरीदाबाद सेक्टर 16 स्थित सन फ्लैग चौक के सौंदर्यकरण परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 16 मार्केट के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की योजना भी तैयार हो चुकी है।
1: सेक्टर 16 की मार्केट है, उसको एक मॉडर्न मार्केट किस तरीके से बनाया जाए उस पर काम चल रहा है। डीपीआर बन गई है, बजट पास हो गया है, उसका टेंडर लगा हुआ है, जल्दी खुल जाएगा, एक दो महीने के अंदर उसका काम शुरू कर देगा। और फैजाबाद के अंदर बड़ी दिक्कत है, जब आदमी आ जाए, बरसात आ जाए, तेज हवाएं चल जाए, लाइट फुल हो जाती है, जितनी भी ये तारे हैं सारी की सारी अंडरग्राउंड हो जाएंगी।
0: उन्होंने कहा कि बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए 2200 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। श्री विपुल गोयल ने जल भराव की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में काफी सुधार हुआ है। केंद्र सरकार के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत फरीदाबाद में स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बड़खल से विधायक धनेश अदलखा, फरीदाबाद जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा और अन्य गणमान्य अतिथियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद सभी ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाई और नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसे लोगों की सोच और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और शुद्ध पर्यावरण स्वस्थ समाज की आधारशिला है तथा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करे। आज सोमवती अमावस्या पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर तड़कसार ही देश के विभिन्न राज्यों से आए लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और सुख समृद्धि की कामना की। सरोवर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की आत्मा तृप्ति के लिए पिंडदान और जल तर्पण किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान और दान करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। स्नान के साथ साथ ये दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान हेतु भी बेहद विशेष माना जाता है। जींद जिले के ऐतिहासिक एवं महाभारत कालीन गांव पांडू पिंडारा में पवित्र पिंड तारक तीर्थ पर आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर विभिन्न प्रांतों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान व तर्पण किया। तीर्थ परिसर और आसपास में लगे मेले में श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी भी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। एक बार फिर से आनंद लीजिए प्रसार भारती के प्रसारण।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में पूर्ण रूप से बर्बाद दुकानों के मालिकों को

पत्नी सी लगी क्योंकि छोटी खुशियों को लेकर आई है। छोटी छोटी खुशियों के मायने बहुत बड़े होते हैं, बस हम इन्हें देख नहीं पाते। हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, बस शायद दिखावा करना चाहते हैं। पर हम तो छोटी छोटी सादगी भरी बातों से ही खुश रहते हैं, बस उसमें अपनापन हो। अब देखो ना, कल थोड़ी बारिश हुई, हमने उसे बड़े ध्यान से देखा। जब पानी की बूंदें पौधों पर पड़ी तो पौधों की धूल साफ हो गई, ये देखकर हम खुश हो गए। फिर हम ये भूल गए कि बारिश से बाकी पूरा सब जगह खराब भी तो हो गया। बात तो सही है, बारिश जब आती है तो खुशियों की फुहार लेकर आती है। चलिए इसी के साथ सुनते हैं भूपिंदर सिंह और अनुराधा का गाया ये गीत दूरियां, इस फिल्म से सुदर्शन फकीर की रचना और जयदेव का संगीत।

हमारी इबारत से लिया गया इस गीत में जो शब्द था वो था जिंदगी। एक साथी ने लिखा है, जब कभी सुबह की सैर के वक्त किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी सांसों को आता जाता महसूस करना, पक्षियों की चहचहाट को सुनना असीम खुशी और शांति दे जाता है। प्रकृति कितना कुछ सिखा जाती है कि खुशी किसी के पीछे भागने में नहीं बल्कि ठहराव में है, हर पल को महसूस करने में है। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि कमेंट करूं या ना करूं, ऐसा क्यों भाई? अब इसका जवाब भी आप दे ही दीजिए अगले कमेंट में। खैर आगे बढ़ते हैं। एक साथी ने, उन्हें 12 बजे का कार्यक्रम पसंद आया उसके बारे में लिखा है। एक साथी ने लिखा है, हमारे भोपाल में 2-3 दिन से बादल और सूरज की लुका छिपी चल रही है, हल्का फुल्का पानी भी आ जाता है, लेकिन सूरज की तपिश से कुछ तो राहत मिल गई है। अब देखिए किस तरह समय बदलता है और जज्बात भी उसके साथ बदल जाते हैं। आज जब सूरज की गर्मी के बीच हल्का फुल्का पानी आता है तो वो ठंडक अच्छी लगती है। यही हल्का फुल्का पानी जब भारी भरकम भरकम बारिश में बदल जाता है और जब कई दिनों तक गहरे बादल छाए रहते हैं, घने बादल छाए रहते हैं, तब जब हल्की सी वो धूप की एक किरण आती है ना, वो भी खुशी दे जाती है और तब हमें लगता है कि अरे सूरज दादा दर्शन तो दे दो। बिल्कुल सही कहा ना, ऐसा ही लगता है ना। तो चलिए इसी के साथ अगला गीत आपको सुनवाते हैं, देखते हैं कितने हमारे आज के श्रोताओं ने इसे सही पहचाना है। ये गीत है फिल्म शबनम से मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अख्तर के, जावेद अनवर के बोल और उषा खन्ना का संगीत।

0: शुक्रम।
1: तो सादगी शब्द था इस गीत में जो हमारी इबारत में भी शामिल था और कई साथियों ने सही भी पहचाना। एक साथी लिखते हैं, जीवन का फलसफा बताती क्या खूबसूरत इबारत है आज की। मराठी में कहते हैं, तुझे आहे तुझ पाशी परी तू जागा चुकलासी। हमें मालूम ही नहीं होता कि जीवन के बहुत सारे सुनहरे पल छोटी छोटी बातों में हमारे पास ही छिपे रहते हैं और हम कस्तूरी मृग की तरह कस्तूर की तलाश में दूर दूर भागते रहते हैं। असली खुशी तो आत्मिक समाधान में है जो चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कुराहट ले आती है। इसी के साथ इन्होंने कुछ गीतों की लिस्ट भी लिखी है, बताइएगा यदि इसमें से कोई गीत आता है तो। एक साथी ने लिखा है, अक्सर हम बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा में छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं छोटे सुखद पलों से बना होता है। सुबह की ताजी हवा, किसी अपने की मुस्कान, दोस्तों से बातचीत, बारिश की फुहार, चाय की प्याली या किसी की सच्ची प्रशंसा, ये छोटे छोटे पल मन को सुकून और आनंद से भर देते हैं। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है वो जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाता है। एक साथी ने लिखा है, मेरी हर सुबह ईश्वर की प्रार्थना के बाद विविध भारती, न्यूज़पेपर और अदरक इलायची दालचीनी वाली चाय के साथ होती है। दिल में खुशी, होठों पर मुस्कान और मीठी जुबान, सभी के लिए प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है। और हाँ, जानवरों और पक्षियों को दाना पानी रखना नहीं भूलता। अच्छी बात है, ये हमेशा ही होना चाहिए। अभी तो गर्मी इतनी है कि पक्षियों के लिए पानी दाना रखना एक अच्छी आदत है, ये हम कहेंगे। आइए इसी के साथ, इस जीवन की सफर वाली इबारत के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कभी धूप कभी छांव, इस फिल्म का गीत प्रदीप की आवाज में। इस गीत की रचना की है प्रदीप ने, चित्रगुप्त का संगीत।

तो धूप शब्द था जो हमारी इबारत में भी शामिल था और इस गीत में भी था। साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि किसी बात को लेकर आप बड़े दुखी हो रहे थे और फिर अचानक आपको पता चलता है कि ये बात उतनी दुखी होने वाली थी ही नहीं, या फिर हम शायद उस बात को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, लेकिन जिंदगी में उससे भी बढ़कर कई सारी अच्छी चीजें हैं जो हमें मिलनी बाकी हैं और मिलती भी हैं। तो अगर ऐसा कभी कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो तो आप हमारे साथ फेसबुक पर साझा कर सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं मुकेश की आवाज में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, खयाम का संगीत, फिल्म का नाम कभी कभी।

जी हाँ, तो पल वो शब्द था जो इस गीत में चुना गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है, ऊपर वाला पांसा फेंके नीचे चलते दांव। पंक्ति भाग्य और कर्म के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। भगवान या नियति जीवन की परिस्थितियां तय करती हैं। पांसा फेंकना, इंसान धरती पर जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और कर्मों से फैसले लेता है। एक साथी ने लिखा है, कभी धूप कभी छांव, आज बादलों की ओट में सूरज भी अठखेलियां सी कर रहा है। कभी धूप खिलखिला रही है तो कभी छांव अपना आंचल लहरा रही है। जी हाँ, यही तो बारिश की धीमी धीमी शुरुआत हो रही है। जब कभी लगता है कि बस अब तो बरसात आने ही वाली है कि जल्दी से सूरज दादा आकर अपने दर्शन दे देते हैं, और जब चिलमिलाती धूप पड़ने लगती है तो कहीं बीच में से ही हल्की सी फुहार आ जाती है। बहरहाल कार्यक्रम का आधा समय हो गया है, और चलिए एक बार हम अपनी जो इबारत है उसे फिर से पढ़ देते हैं। यदि कोई साथी है जो फेसबुक पर नहीं है, एक बार फिर अगर सुनना चाहते हैं तो हमारी जो इबारत थी, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा के बीच ही छिपी होती है। बस थोड़ा रुककर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो आइए इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में ये गीत फिल्म एहसास से। इंदिवर की रचना है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

तो ये जो गीत था इसमें छोटे शब्द लिया गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है कि नेहा जी आप सवाल इस तरह से पूछें कि हम बिजी रहें, फिल्म का नाम पूछ सकती हैं, गीतकार पूछ सकती हैं, किस सन में ये फिल्म आई ये पूछ सकती हैं, हम बिजी रहेंगे। आपको लगता है इतने आसान सवाल हम पूछेंगे आपसे? क्योंकि ये सवाल तो कोई भी गूगल बाबा से देखकर, सोशल मीडिया की किसी भी साइट से देखकर जवाब दे सकता है। हमें वो बातें जानने में अच्छा लगता है जो हमें आपसे जानने को मिलती हैं, जो बातें यूनिक होती है आपके बारे में। जैसे कि देखिए, हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि हमारी जो मेड है वो भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, उसे जो समझ आया आपका सवाल तो उसका जवाब सुनो। अभी कुछ दिन पहले घर से आते समय उसका मंगलसूत्र कहीं गिर गया, वो बहुत उदास हो गई, पर उसने सबका काम किया और वो वापस गई तो उसका वो मंगलसूत्र

0: हमारे साथ अच्छा ही होगा। और देखिए, आपके साथ हुआ भी, मंगलसूत्र जैसी चीज गिरना ना सिर्फ मतलब हमें एक मानसिक पीड़ा देता है, ये हमारे एक संपदा का भी नुकसान होता है, लेकिन देखिए आपको मिल भी गया। तो कभी कभी होता है कि हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, सोचते हैं, मगर जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जितना समय हमने चिंता में व्यस्त किया, चिंता में मतलब गवाया, उतना अगर हम उसके उसका जवाब ढूंढने में या हल ढूंढने में निकालते तो शायद परिणाम बेहतर होते। एक साथी ने लिखा है, सुबह की सैर पर जाते हुए और लौटते हुए सब्जी और फलों से भरे ठेले, कहीं फूलों की दुकान, किसी जानवर की अजब गजब हरकतें, फुदकते तरह की तरह तरह की चिड़ियाओं को देखकर भी मन बहुत हल्का महसूस करता है। कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारना चाहिए, बहुत से दुख दर्द भूल जाते हैं, किसी से हल्की फुल्की बातें करके भी मन हल्का सा हो जाता है। वहीं पर एक साथी लिखते हैं, मराठी लेखक हैं पु ल देशपांडे, कहते हैं हमारी उम्र तब तक है जब तक हम लोगों को याद रहते हैं। बस यही बात है, हम पल दो पल के मेहमान हैं, फिर भी दिल में जीते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ सुनिए बातों बातों में इस फिल्म का गीत, अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत।
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम,

0: क्या पसंद, प्यार के जहां मेरा संबंध जब हम तुम
1: हम बन गए हैं सनम बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम सारा राम पम पम।

एक साथी लिखते हैं, साधारण जीवन शैली का मतलब पीछे रह जाना नहीं होता, इसका मतलब है शोर कम करके असली आवाज को ही सुनना। जब प्लान कम होंगे तो पल ज्यादा मिलेंगे। छोटी छोटी खुशियां वही हैं जिन्हें जिनकी कोई डिमांड नहीं होती। चाय की पहली चुस्की से लेकर पहली बारिश में मिट्टी की वो सौंध ही खुशबू वाली खुशियां हम इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर की इच्छा तो बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजाम में लगी रहती है, पर जिंदगी की बड़ी खुशियों की किश्तों में नहीं आती। जिंदगी की बड़ी खुशियां किश्तों में नहीं आती, वो हर रोज छोटी छोटी खुशियों में ही निहित होती है। और एक साथी ने पहले जो गीत हमने बजाया उसे लेकर लिखा है, जो छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में है वो। यही सही है, जिस घर में बीच का भाई या बहन हो उसकी यही मुसीबत होती है। अब आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि आपके इस कमेंट से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप भी घर में बीच वाले भाई हैं या बहन हैं। तो चलिए बताइए, क्या मुसीबत ऐसी होती है जब आप बीच वाले भाई या बहन होते हैं। तब तक सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज है, आनंद फिल्म का ये गीत है, योगेश ने इसे लिखा है और सलील चौधरी का संगीत। पिछले गीत का शब्द था खुशी और इस गीत का कहीं दूर।

जैसे कि हमने पूछा था अपने एक साथी से कि बीच के भाई बहनों की क्या समस्या होती है, तो उसके जवाब में साथ एक साथी ने लिखा है, छोटे छोटे कामों के लिए हम बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े कामों के लिए हम छोटे होते हैं। जैसा जी चाहे घर वाले हमारा उपयोग कर लेते हैं। आपकी ये बात पढ़कर बड़ी हंसी आई मुझे, और सही कहा आपने कि होता है ऐसा। इवन एक उम्र ऐसी आती भी है जब हम अगर कुछ बच्चों जैसी हरकत करें तो डांट पड़ जाती है कि अब इतने छोटे हो क्या, और अगर कोई बड़ों के बीच में कोई बात कर ले तो तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि बड़ों में बात करो, ये भी हो जाता है। तो ये तो सब बातें होनी ही है। एक साथी ने लिखा है, हमने कई बार ऐसे कई काम देखे हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। एक बार हम गुरुजी के प्रोग्राम में नागपुर जा रहे थे और इतनी तेज बारिश की गाड़ी से जाना मुश्किल था स्टेशन तक। उधर ट्रेन राइट टाइम, जो हमारी दोस्त स्टेशन पहुंच गई थी उसने कहा ट्रेन चलने वाली है, हम अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप ही हमें पहुंचाएंगे। वो हम कैसे पहुंचे नहीं पता, हम अंदर गए, हमारे सामने ही ट्रेन का डिब्बा और हम ऊपर चढ़े और ट्रेन चल दी। अब इसे क्या कहेंगे नहीं पता। जी हाँ, कभी कभी होता है कि हमें लगता है अब तो ये काम संभव ही नहीं है, लेकिन किसी तरह कोई चमत्कार हो जाता है और असंभव काम संभव हो जाता है। एक साथी ने लिखा है, किसी भी काम और परेशानी में चिंतन करना करना ही समझदारी है। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। और लीजिए अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की, गुलजार के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, बीच वाले भाई या बहन को बड़ा भाई या बहन दोनों की सुननी पड़ती है। सब कहते हैं वो बड़ा है और वो तुमसे छोटा है, बेचारा चक्की में पिस जाता है। एक साथी ने लिखा, बचपन में एक कहानी या वाकया सुना था कि एक व्यक्ति बहुत टाइट जूते पहनकर बाहर जाया करते थे। घर आकर जब जूते उतारते थे तो उनको बहुत आराम महसूस तब वो बहुत आराम महसूस करते थे। लोगों ने सलाह दी कि थोड़े ढीले जूते पहने, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जीवन में कोई सुख नहीं है, जब मैं जूते उतारता हूँ तो बहुत सुख महसूस करता हूँ। देखिए, किसी के लिए कोई बात कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। शायद हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो किसी के लिए कितना सुकून देने वाली बात हो सकती है। आज का जो सुरीला सफर का कार्यक्रम है, हमें संपन्न करना होगा क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। बस इतना ही कहेंगे कि आज की संगीत यात्रा में हमने उन छोटे छोटे एहसासों को छूने की कोशिश की जो अक्सर भागती दौड़ती जिंदगी में नजरअंदाज हो जाते हैं। उम्मीद है कि इन गीतों ने आपके मन में कुछ मीठी यादें और कुछ सुकून भरे पल जरूर जगाए होंगे। चलते चलते बस इतना याद रखिए, जिंदगी की असली रौनक बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उन लम्हों में होती है जिन्हें हम दिल से जीते हैं। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

दोस्तों, मनुष्य के जीवन में पैसे का बड़ा महत्व है जो बढ़ता ही जा रहा है, और पैसे की बढ़ती अहमियत ने हर इंसान को कमाई के लिए दौड़ने पर मजबूर कर दिया है।

अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम धन अर्जित करते हैं। जरूरतें पूरी होने पर लोग जुट जाते हैं अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने में, जिसके लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है, और इसी चक्कर में वे अपने करीबी लोगों से दूर होते जाते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर पैसे का गुरूर कतई अच्छा नहीं है।

क्या मिले खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या।

जरूरतें पूरी करते करते हम अपनी इच्छाओं को पैसों से पूरा करने में लग जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता। ऊंची अट्टालिका में रहने वाला नर्म बिस्तर पर भी रात भर सो नहीं पाता, और दिन भर मेहनत करके एक इंसान पत्थर की सेज पर गहरी नींद सोता है। एक संतोषपूर्ण जीवन ही समृद्ध जीवन है। मन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। शांत मन किसी भी परिस्थिति में गुनगुनाता रहता है और आनंद से भरा होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया बेरंगू, पिया है महासतैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति

0: और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूशनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरु मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया।

0: गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 153,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 253,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
2: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
3: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
4: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेती बाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुरैया के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम दिल लगी, शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद अली का संगीत।

अल्फाज कमर जलालाबादी के ये गीत जो है इसकी तर्ज बनाई है हुस्नलाल भगतराम ने, सुरैया और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, फिल्म का नाम सनम।

नौशाद अली के संगीत निर्देशन में सुनिए शकील बदायूनी की लिखी ये रचना। सुरैया की आवाज, फिल्म का नाम दर्द।

0: का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विद्यार्थी फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और उषा तिमोथी की आवाज में। मधुकर बिहारी ने इसे लिखा है और बाबू सिंह का संगीत।

जिंदगी और मौत इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे महेंद्र कपूर की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना और सी रामचंद्र का संगीत। आज के सदाबहार नगमे से इस गीत के साथ ही इजाजत दीजिए। नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी आपको भी और मेरे सभी श्रोताओं को सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कैसी है सोनाली जी आप?
0: मैं तो मजे में हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सहेली हमें बहुत दिनों बाद बाजार में या कहीं अन्य जगह पर दिखाई देती है और उसके कुछ दिन बाद तुरंत दिखाई देती है, तो हम कहते हैं देखिए ऐसे तो हम मिलते नहीं है और कभी कभी बार बार मिलने लगते हैं।
1: मिले तो अचानक फिर मिलने लगे। मैं जान रही हूँ कि आप मेरी ही बात कर रही हैं। पिछली बार ही हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और लो आज फिर हो गई।
0: तो ऐसी मुलाकातें बार बार होती रहे तो
1: अच्छा लगता है।
0: तो चलिए विषय बता दें आज के।
1: बिल्कुल, आज के विषयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस,
0: जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना।
1: जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है इसके बारे में। मतलब ये एक गंभीर विषय है, हो सकता है हमें यूं बात करते वक्त लगेगा, हम कहते हैं कि ठीक है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें नहीं है, उन बातों को व्यवहार में भी लाना है।
0: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर झल्लाहट के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे हम दुर्व्यवहार यानी बस कुछ ऊंची आवाज में बात कर ले, उससे आगे तो क्षमा ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उनसे तुरंत माफी मांग लेना भी बहुत जरूरी है। और इस विषय में हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखकर भेजे हैं।
1: जी हाँ, उनको भी हम जरूर पढ़ेंगे। अगला विषय किस बारे में है बताएंगी?
0: जी आज कथा सुधा, जिसका सभी श्रोताओं को इंतजार है, आभूषण भाग 3, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। साथ ही बहुत जल्दी यानी कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए?
1: बारिश आने वाली है। सोनाली जी बस सुन ही रहे हैं कि बारिश आने वाली है, कब आने वाली है?
0: बस आएगी ना तो हम उसका बहुत खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे और हम कुछ ऐसा करेंगे बारिश के मौसम में, यानी खूब सारे पेड़ लगाएंगे। जब भी हम जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन गुठलियों को हमें सहेज कर रखना है और जैसे ही बारिश आएगी तो हमें खूब सारे पेड़ लगाना है ताकि हमें इतना इंतजार ना करना पड़े।
1: वही तो बस सुन रहे हैं, लेकिन बारिश आने के पहले हमें कुछ तैयारियां भी करनी है ना।
0: तो वो कौन सी तैयारियां हैं वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ है जिनकी टहनियां जो बहुत बढ़ चुकी है, जो गिरने का डर है वो कटवाते हैं। क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है उस बारे में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें मक्खन मलाइयों और बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी।
1: क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई है, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है।
0: और अब क्या करना है?
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: बड़ा ही सुंदर गाना था ये,
1: बहुत सुरीला गाना, और हमारे बहुत सारे सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा कि गाना बहुत पसंद आया। तो अब सभी को इंतजार है कथा सुधा का, तो
0: मुझे भी
1: है ना, मुझे भी। तो सुनते हैं आभूषण भाग 3।
0: जी
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।

0: पिछली कड़ी में आपने सुना
1: मंगला सुंदरी ना सही पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते, प्रेम की शक्ति अपार है। पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग।
0: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानी और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, 4 प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष के अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन? शीतला की मां कहती, 4 दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं? सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है? विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी मां के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। मां कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना ना था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में चित्त की उद्विग्नता में इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गई, वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे, मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
4: ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
0: किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया,
4: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, आ ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य। शीतला, ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है, हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल सिंह मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। शीतला, ओ शीतला।
0: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
5: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही ये सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूं।
0: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
4: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी, मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूँ।
1: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी।

0: कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए।
1: कहाँ से आती हो भैया?
2: गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं?
1: तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं तो फूको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगी।
2: शीतला बहन, एक बात पूछूं, बताओगी?
1: हाँ।
2: विमल सिंह किस बात पर रूठे थे तुमसे?
1: कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या? मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया? बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
0: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहां अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी। कर्कश स्वर से बोली,
3: अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है? ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सब काटे हैं। अरे अपने बनाओ सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछती थी है। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने।
1: हाँ। क्या वही अनोखी धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
2: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
1: जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है, मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
0: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख कांति मलिन हो गई है, पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले,
2: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
0: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं।
4: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह जी श्याम, शीतला पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह जयंत पात्रीकर, मंगला ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
5: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
6: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद आई।
5: और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का
6: जी।
5: लेकिन बीच में एक गीत सुन लिया जाए
6: तो सुनते हैं एक गाना।

0: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार,
1: हाँ,
0: है ना?
1: और दुगना होके मिलता है।
0: बिल्कुल दुगना क्या, चौगुना आठ गुना होके मिलता है, क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले ले।
0: बिल्कुल लेते हैं।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली। और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।
1: बिल्कुल, प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए।
0: उन्हें वक्त दिया जाए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े, या फिर ना घूमना फिरना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़िया या बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता है। उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में 2-4 पल सुकून, उनके साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
0: लेकिन क्या होता है ना नेहा, कि बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप
1: बिल्कुल
0: जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाए, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी, कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं
0: या
1: उनकी।
0: फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना, उस वक्त हम थोड़ी देर अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे, या फिर ये क्या होता, उन्हें नहीं पता होता, उन्होंने वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं। उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं। तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
1: और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं। अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं, अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रही। तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या कुछ
0: सच
1: काम
0: में काम
1: कर
0: कर
1: रहे
0: रहे
1: हैं।
0: हैं।
1: ऐसा हो जाता है। उनकी, बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
0: बिल्कुल सही नहीं है। कि कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है, और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई है। ये बहुत, ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नेहा, कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें परिवार में महत्व देना है, और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती है ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है, कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है, वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए।
1: बिल्कुल मना लेते हैं।

0: दादी दादी को तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज के व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है, दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है, उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी दादी जी माँ पिताजी बड़े भाई उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात है,
0: ये तो बिल्कुल सही कहा, हमारे माँ पिता हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहिए। वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथ ही लिखते हैं, वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। प्रेम सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई, ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी INPEA इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
0: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती
1: वो
0: है।
1: बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।
0: क्योंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
1: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी नाना नानी है वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
0: जी हाँ। और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज हैं। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेम पूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में संयुक्त परिवार में रहते हैं तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो कभी अवसाद का सामना नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है कि नहीं।
1: आप क्या करें,
0: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए तो एक गाना सुन लेते हैं।
1: गीत

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी
1: बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी हाँ। गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे
0: नहीं आ रहे, और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं
1: और उनका रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है,
1: और वो जो खुशबू आती है नहीं,
0: हाँ हाँ हाँ, सौंधी सौंधी खुशबू,
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते हैं
0: वो तो है। लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
1: बहुत
0: कई
1: जरूरी
0: सारे
1: है।
0: बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो यस, वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना,
0: जी
1: क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नाली नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपंप वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है। तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना है। इससे पानी की बचत तो होती है, साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है। तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए।
0: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत, दीवारें और खिड़कियों में, कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा न हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
1: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता, फिर उसमें मच्छर पनपने लगता हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
0: बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
1: इसलिए फिर वो जो है ना जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है जो बोतल्स वगैरह हैं,
0: हाँ,
1: और बहुत सारा ऐसा सामान है वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबालकर छानकर पीने की आदत डालना जरूरी है, और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाए।
0: बिल्कुल। एक साथ ही लिख रहे हैं, बारिश तो भाई होनी होती है, तो आषाढ़, सावन, भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है, और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे। नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना, चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून के बारिश का हाल था, नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती हैं।
1: बिल्कुल करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए, आप एक गाना सुनिए।
0: गीत सुनना भी बहुत जरूरी है,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकें। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त चीजें।
0: यानी अभी गर्मी में ना तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। पर जब बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूरी हो, आलू की सब्जी हो,
1: सोनाली जी अब तो आप और नाम मत लीजिए।
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाईयो और साथ में बेडमी पूरी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाईयो सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन, इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट, इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची,

0: केसर और कटे हुए बादाम पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। नेहा, आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है। और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती होगी।
0: और वो ना दोने में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है
1: हाँ।
0: इस बारे में, पर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन मलाई खा के आएंगे, क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
1: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिष या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इस वीडियो में इसमें हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूरी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है।
0: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं वो थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेडमी पूरी होती है ना वो कड़क
1: रहती है। जो खाने में भी मजा आता है।
0: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और नेहा अगरकर देसाई का
0: नमस्कार।

पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा।

सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका

0: नामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं, तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
1: तो देखिए, जैसा कि आज का माहौल है उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधुबन।

0: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुन पाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है दरअसल वही महान कहलाता है, और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है, तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं, और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है, अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए, किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना की एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए, 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया। पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया है,
1: तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होना चाहिए।
0: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए, तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
1: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
0: जी जी जी, तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे,
1: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्य उदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्य उदय से ही शुरू हो जाती है, और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए, हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
0: अच्छा
1: जी,
0: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में में यकीन रखते हैं वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
1: जी हाँ।
0: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
1: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
0: जाग जाएं
1: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
0: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
1: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी। बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था। आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल

दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक

0: मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं, उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे, उतना आपका मन शांत रहेगा। जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे, उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातः काल का तो बताया था 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए। फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए। शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है, जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना, रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारी
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा।
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कढ़ी चावल बना सकते हैं, या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
0: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
1: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है। पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा? फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना, कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप प्लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
0: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल किया राजेंद्र जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारी किडनी पर भी असर पड़ता है, बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है, आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए। पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए, थोड़ा पानी आप पीजिए। फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है, घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं। इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
0: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लगे रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
1: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
0: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही
1: पानी की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता।
0: और कहा यह भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो। तो आपकी क्या राय है?
1: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है। तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए। यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए, पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
0: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
1: जी जी।
0: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
1: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी। तू

शारदा जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं, आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार के साथ

0: होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी जी,
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की
0: जी।
1: विहार मतलब कि रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं या और भी इसे शिथिलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं हम तो नहीं तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना,
0: जी,
1: वो भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शिथिलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप

0: समय निकालिए। तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
1: अनुशासित
0: टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए, उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए। और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं, और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
1: जी जी जी।
0: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होके कार्य होगा।
1: आपका
0: तो,
1: कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति, तो उसमें अपेक्षा नहीं होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी जी,
0: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
1: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहा गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
0: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिंदगी।

0: एक बहरा, एक अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,
1: अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है।
0: तो अंधे ने कहा,
2: अरे मूर्ख तुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो चोर दिखाई

0: से सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा? जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है आज के सेहतनामा कार्यक्रम में, सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं,
2: प्रतिपल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप

0: सुबह से लेके शाम दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं,
1: हाँ,
0: सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए, ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
1: क्या क्या किया,
0: क्या क्या किया आपने, हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं क्योंकि हम उस पर गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है, पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी, शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए।
1: अच्छा।
0: कि रोज हमें कोशिश करनी, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे कि हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
1: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फलां फलां ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा,
0: जी
1: ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
0: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है, यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है, तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है, वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
1: टेक्निक जो आप बता रही थी, इसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
0: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
1: विचलित करेंगी नहीं।
0: आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं, पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से, क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
1: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है।
0: जी हाँ बिल्कुल, वही मेरे भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
1: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए?
0: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो, क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपके शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
1: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
1: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
0: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से भर दे, उठे सबके कदम दे।

0: करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
1: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
0: उठ सबके कदम, देखो रम पम।

0: से क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम
1: गम बन गए हैं सनम बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम, गम, गम, गम, गम, गम, गम, गम, गम।

0: रंग बम बम जैसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तेरे रंग बम बम।
1: शारदा जी, गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर, यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में है, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात करें वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस

0: में हैं तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखें कि बहुत देर यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं, आराम तो नहीं कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया शिथिलीकरण होना चाहिए, तो शिथिलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो बहुत ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे। आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा।
1: और फिर से अपना काम करना,
0: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
1: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है। और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में करो,
0: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए, खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
1: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया, बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
0: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए, किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए। आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, है तो आप 1 हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
1: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
0: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी, मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल है जो तुम्हें

0: तो वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जिसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
0: तो सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ बिल्कुल, शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा मन।
1: हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: भव्य भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज।
3: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 5 हैं और आज दिन है सोमवार। प्रत्येक सोमवार हम लेकर हाजिर होते हैं कार्यक्रम एक कलाकार। आइए सुनते हैं ये संदेश और उसके बाद बढ़ेंगे कार्यक्रम की ओर।
4: बताएं, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
5: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
4: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
5: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
4: अब दोनों एक ही ऐप डाउनलोड करें। आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी हिसार से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त विवेक कुमार। श्रोताओं, आज का एक घंटा उन शब्दों के नाम जो कभी गीत बने, कभी गजल बने और कभी सीधे दिल की धड़कन में हम सबके भीतर उतर गए। आज हम बात करेंगे हिंदी कविता और फिल्मी गीतों के उस अनमोल रचनाकार की जिनकी कलम में दर्द भी था, सौंदर्य भी और जिंदगी का गहरा दर्शन भी। जी हाँ दोस्तों, आज के कलाकार हैं पद्म भूषण से सम्मानित कवि और गीतकार गोपाल दास सक्सेना नीरज।

0: श्रोताओं, नीरज का जीवन किसी कविता से कम नहीं था। कभी मुक्त छंद तो कभी दर्द से भरा गीत। गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ। मात्र 6 वर्ष की उम्र में पिता का साया उठ गया और यहीं से जीवन ने उन्हें संघर्ष का पहला छंद पढ़ाया।
1: दिल आज शायर है, गम आज नगमा है।

कभी कचहरी में टाइपिस्ट, कभी सिनेमा घर की दुकान, तो कभी सफाई विभाग में नौकरी। लेकिन हालात चाहे जैसे रहे, नीरज ने अपनी कलम को कभी झुकने नहीं दिया। साल 1942 में एटा से हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में पास किया और 1993 में हिंदी साहित्य से एमए किया। श्रोताओं, नीरज केवल कवि नहीं थे, वे एक स्वाभिमानी शिक्षक भी थे। मेरठ कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता बने, लेकिन जब आत्मसम्मान पर चोट लगी तो उन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। इसके बाद अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में प्राध्यापक बने और वहीं उनकी कविता ने स्थायी उड़ान भरी।

दोस्तों, कवि सम्मेलनों में अगर कोई नाम तालियों की गूंज बन जाता था तो वह था नीरज। उनकी आवाज में सच्चाई थी, उनकी पंक्तियों में सीधापन,

0: अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, यही लोकप्रियता उन्हें ले गई मुंबई फिल्मी दुनिया तक। नीरज ने फिल्म नई उम्र की नई फसल से गीत लेखन की शुरुआत की और पहली ही फिल्म में ऐसा गीत रचा जो आज भी दिल की दीवारों पर लिखा है।
1: स्वप्न झरे फूल से।

0: यह उस पीढ़ी की पीड़ा है जो सपने देखते देखते जिंदगी को गुजरते देखती रहती है। इसके बाद एक के बाद एक अमर गीत। नीरज का रोमांस कभी सतही नहीं था, वह आत्मा तक उतरता था।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: राज कपूर की कालजयी फिल्म मेरा नाम जोकर, यह गीत हंसते हंसते रुला देता है और रुलाते रुलाते जीना सिखा देता है।
1: ए भाई,

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के गोले

0: अरे करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।

सर्कस। हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेगी आपको सदियां हमें भुलाने में। न पीने का सलीका न पिलाने का सऊर, ऐसे भी लोग चले आए हैं मैखाने में।

0: श्रोताओं, नीरज को मिले सम्मान साल 1991 में पद्मश्री, साल 1994 में यश भारती, साल 2007 में पद्म भूषण और फिल्म फेयर पुरस्कार। लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान आप, हम और हमारी यादें।
1: ओ मेरी,

दोस्तों कभी कभी मरते नहीं, वे शब्दों में हमेशा जीवित रहते हैं। कार्यक्रम एक कलाकार में आज हमने याद किया महान कवि और गीतकार गोपाल दास सक्सेना नीरज को। इजाजत दीजिए आपके रेडियो दोस्त विवेक कुमार को। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक और कलाकार एक और कहानी के साथ।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। आज के कलाकार थे गीतकार गोपाल दास नीरज। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

इसी भक्तिपूर्ण रचना के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत संपन्न होता है। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा उमंग। और आज के युवा उमंग में आप सुनेंगे बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी सहायता हेतु उपलब्ध सरकारी सेवाएं। ये जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाएगी। रोजगार समाचार होगा और धरोहर राखी गढ़ी साइट, इसके बारे में भी आपको इस कार्यक्रम में बताया जाएगा। ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं सुधीर और अनमोल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा उमंग।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार केंद्र 102.3 मेगाहर्ट्ज़ मैनमोल।
1: और मैं सुधीर, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युवा उमंग। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण के बारे में, जागरूकता बढ़ाने और उनकी सहायता हेतु उपलब्ध सरकारी योजनाओं के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे रोजगार समाचार और अंत में राखी गढ़ी धरोहर के बारे में बात। तो श्रोताओं, मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि जिस समाज की सभ्यता का सबसे बड़ा प्रमाण, तो श्रोताओं कहते हैं कि किसी भी समाज की सभ्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वह अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वह व्यक्ति जिसने कभी अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने परिवार के लिए दिन रात मेहनत की, जिसने जीवन के अनुभवों से घर और समाज को दिशा दी, जब वही व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव में सम्मान, सुरक्षा और अपनापन खोजने लगे, तो यह केवल एक पारिवारिक नहीं बल्कि सामाजिक चिंता का विषय बन जाता है। इसी चिंता को समझने और समाज को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 15 जून को पूरी दुनिया में विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
0: दुनिया भर में करोड़ों बुजुर्ग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में शोषण, उपेक्षा या दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। कई बार यह दुर्व्यवहार किसी अजनबी द्वारा नहीं बल्कि अपने ही परिवार के लोगों द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में लगभग हर 6 में से एक बुजुर्ग किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का शिकार होता है। इसी समस्या की गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2006 में पहली बार विश्व स्तर पर वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके बाद 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे घोषित किया। इसका उद्देश्य था बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा, समाज में सम्मान की भावना बढ़ाना, शोषण और हिंसा के मामलों को सामने लाना और सरकारों को प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रेरित करना।
1: जी बिल्कुल जी, और श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, जो कि हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य न सिर्फ केवल बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले शोषण, हिंसा, उपेक्षा और भेदभाव के प्रति समाज को जागरूक करना है, बल्कि इससे आगे एक कदम बढ़कर किस प्रकार हम उनकी सहायता कर सकते हैं, इस समाज को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी बात करना है। और अगर बात करें कि वृद्ध दुर्व्यवहार क्या है,
0: अगर हम वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मना रहे हैं तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वृद्ध दुर्व्यवहार क्या है। तो श्रोताओं देखिए, वृद्ध दुर्व्यवहार का अर्थ है किसी भी वरिष्ठ नागरिक को जानबूझकर या लापरवाही के कारण शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक या सामाजिक नुकसान पहुंचाना। दुर्व्यवहार सिर्फ एक तरह का नहीं होता, दुर्व्यवहार के विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे शारीरिक दुर्व्यवहार, किसी भी बुजुर्ग को मारना, धक्का देना, चोट पहुंचाना, दवाई का गलत उपयोग करना, जबरदस्ती घर में बंद रखना, ये सब शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आते हैं।
1: जी बिल्कुल, इसमें मानसिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार भी आता है। देखिए, हम धक्का देना, चोट पहुंचाना या फिर उनका देखभाल ना करना एक तरीके से शारीरिक हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी किसी को गाली देना, उनका अपमान करना या फिर उन्हें डरा धमका के रखना, कमरे में बंद रखना, किसी से मिलने न देना, ये जो सारे व्यवहार हम किसी भी व्यक्ति के साथ करते हैं, खास करके बुजुर्ग व्यक्ति के साथ करते हैं, तो उसे हम मानसिक दुर्व्यवहार के रूप में गिनते हैं। इससे क्या होता है कि जिस व्यक्ति के साथ, जिस इंसान के साथ आप ये व्यवहार करते हैं, वह अंदरूनी तौर से कमजोर हो जाता है, वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है, जिसकी वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस है, जो बातचीत करने का जो उसका मन है, वो एक तरीके से खत्म हो जाता है, वो अपने आप में घुटन महसूस करने लगता है।
0: जी बिल्कुल, और आजकल हम जो हमारे समाज में देख रहे हैं, सिर्फ मानसिक और शारीरिक शोषण के अलावा हम आर्थिक शोषण भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं। हमारे देश में आर्थिक शोषण बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अगर मैं इससे उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि माता पिता की बुजुर्ग हैं, क्योंकि अब वो तो आते ही, जैसे उनकी पेंशन आती है, उनकी पेंशन छीन लेना, उनके बैंक खाते का दुरुपयोग करना। हम हमारे समाज में काफी बार देखते हैं कि अगर कोई वृद्ध महिला है जिसके जिनके पति जो है आर्मी में थे और अब उनकी पेंशन आती है,

0: है तो उनके बेटे उनसे बिना बताए उनके अंगूठे लगाकर उनकी पेंशन का दुरुपयोग करते हैं।
1: जी बिल्कुल। और इसी में जो है इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं उन बुजुर्गों को एक तरीके से हिला देती हैं, वो अपमानित महसूस करने के साथ साथ जो अपनापन है उसमें भी वो कमी महसूस
0: जी
1: करते हैं कि
0: बिल्कुल
1: जिन बच्चों के लिए हमने ताजीवन इतनी मेहनत की, अपना सब कुछ त्याग दिया और वही सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो आर्थिक शोषण न केवल सिर्फ ये है कि भाई हमने उनका पैसा ले लिया या उनके साथ धोखाधड़ी करके जो है पैसा एटीएम या फिर जो भी है हमने अपने जब्त में ले लिया, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जो उनकी चीजें हैं जो मानसिक रूप से उन्हें परेशान करती हैं
0: जो
1: कि
0: उपेक्षाएं हम उनके साथ करते हैं
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल।
0: काफी ज्यादा उन्हें हानि पहुंचाती हैं। इन उपेक्षाओं में आप सामाजिक उपेक्षाएं भी समझ सकते हैं या घर में जो निजी उपेक्षाएं हैं वो भी समझ सकते हैं, जैसे उन्हें भोजन ना देना, दवा ना देना, डॉक्टर के पास ना लेकर जाना, अकेला छोड़ देना। और अगर हम सामाजिक उपेक्षाओं की बात करें, जो सामाजिक जो सोशल नेग्लिजेंस की बात करें, उसमें हमारे पास है कि उन्हें परिवार के निर्णयों से दूर रखना, सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल ना करना, रिश्तेदारों से मिलने से रोकना।
1: जैसा कि अभी आपने बताया मैम, जो सामाजिक उपेक्षा है उसमें बुजुर्गों की राय नहीं ली जाती, उनसे बातचीत नहीं की जाती, उन्हें अपमानित तो महसूस करवाया जाता है। इस चक्कर में क्या होता है कि वो ना अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि पूरे जीवन उन्होंने अगर अपने परिवार के लिए किया, समाज के लिए जो किया वो अब इतना महत्व नहीं देता, उनके पास जीवन की जो मेहनत है, पूरे जीवन का जो उनका संघर्ष है वो एक तरीके से शून्य हो जाता है, वो अपने आप में घृणा करने लगते हैं। इसलिए चाहे सामाजिक उपेक्षा हो, चाहे निजी उपेक्षा हो, चाहे आर्थिक शोषण हो, मानसिक दुर्व्यवहार या फिर शारीरिक दुर्व्यवहार, ये वो सारी चीजें आती हैं जो एक बुजुर्ग इंसान को अपमानित महसूस कराती हैं, जो एक बुजुर्ग इंसान को
0: हानि पहुंचाती
1: अपमानित
0: है।
1: हानि पहुंचाती है, अपमानित महसूस कराती है। और इन सबको लेकर बुजुर्ग इंसान इस हद तक डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है। काफी बार हम देखते हैं कि वो बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं इस चक्कर में अकेलेपन में बचने के लिए।
0: जी बिल्कुल, आंकड़े भी ये बताते हैं कि भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसी नाजुक उम्र में जब उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान की जरूरत है तो वो अपने परिवार का साथ ना पाकर काफी ज्यादा दुखी रहते हैं। अकेलेपन की वजह से और अपने परिवार के द्वारा ध्यान ना रखे जाने की वजह से वो काफी सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि अकेलापन, स्वास्थ्य में समस्याएं, आर्थिक असुरक्षा, पारिवारिक उपेक्षा।
1: भाई अनमोल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि अगर ये विश्व स्तर पर जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि भाई विदेशों में लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होना आम बात है, वहां सब लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में ऐसा मुश्किल है। जब हम ऐसी बातें करते हैं तो हमें सामने से सुनने को मिलता है कि भारतवर्ष में हमारे आसपास हम हमारे बुजुर्गों को भगवान का दर्जा देते हैं, माता पिता को भगवान कहा जाता है, हमेशा उनकी पूजा की जाती है। लेकिन अभी वक्त बदल रहा है, बदलते हालातों में जो बच्चे हैं वो बाहर विदेशों में पढ़ने जाने लगे हैं या बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो लगभग वही स्थिति एक तरीके से भारतवर्ष में भी अब देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी अनमोल ने बताया कि भारतवर्ष में भी 60 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग हैं उनमें ये चीजें लगातार देखने को मिल रही है। गांव खेड़ों में ये जो केस है वो कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो बड़े शहर दिल्ली मुंबई जैसे शहर है वहां ये केस बहुत ज्यादा आम हो चुके हैं, जहाँ देखा जाता है कि एक कमरे में बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके बच्चे आते हैं, अपना खाना पीना करते हैं और अगली सुबह फिर से अपने काम पर चले जाते हैं। उन्हें दो दो तीन तीन दिन तक नहीं पता होता कि उनके माता पिता कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। तो इसलिए अभी हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारे आसपास भी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलने लगे। इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे आसपास के लोग बहुत ज्यादा सामाजिक हैं और जब उन्हें इन चीजों से दूर किया जाता है तो वो अपने आप में अपमानित महसूस करते हैं।
0: जी बिल्कुल सुधीर, आपने जो माता पिता को भगवान का दर्जा देने वाली बात की उसमें मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ये बात सोचना बिल्कुल जायज है कि विश्व स्तर पर तो हम ये बात समझ सकते हैं कि जो वृद्ध नागरिक है उनके साथ दुर्व्यवहार होता होगा, लेकिन हमारे देश में जहाँ बड़े बुजुर्गों की राय को सबसे ऊपर रखा जाता है, जहाँ पे बड़े बुजुर्गों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहां पे इस दिन को मनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सोचने का विषय है। और ये इसलिए है क्योंकि आज के समय पर माता पिता को भगवान सिर्फ तब तक माना जाता है जब तक वो अपने बच्चों को किसी तरह की आर्थिक आय किसी न किसी तरह से अपने बच्चों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं, जैसे जैसे उनकी जरूरतें उनके बच्चों पर बढ़ने लगती हैं, तो बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं।
1: जी बिल्कुल। और ये जो अब सिचुएशन बनी हुई है समाज में, ये हम एक बढ़ते सतर के रूप में देख रहे हैं और इसलिए इस दिन को मनाने की जरूरत पड़ी कि जो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है उसके लिए

0: करने की जरूरत पड़ी। और इस जागरूकता के संदर्भ में सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, समाज ही नहीं, बल्कि सरकार भी बहुत बड़ा रूप अदा कर रही है। और बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो सरकार द्वारा शुरू की गई है, जो बुजुर्ग इंसानों की मदद के लिए बनाई गई है। जैसे कि मैं आपको सबसे बताऊं तो अव्यय, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। और मुख्य रूप से इसमें वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर, फिजियोथेरेपी सेवाएं, हेल्पलाइन नंबर और वरिष्ठ नागरिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत लोगों को बताया जाता है कि किस तरीके से जो बुजुर्ग इंसान परेशान है उसकी मदद की जा सकती है, किस प्रकार से जो अकेलापन है बुजुर्गों में उसको दूर किया जा सकता है, या कोई बुजुर्ग जिसको मदद नहीं मिल रही है, जिसका परिवार नहीं है, उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है, उनके लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर जैसी सुविधाएं इस योजना के तहत भारत सरकार ने लागू की।
1: जी बिल्कुल।
0: वही इसी के साथ आपको बताएं कि हेल्पलाइन नंबर जो है 1-4-5-6-7, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि 1-4-5-6-7 ये हेल्पलाइन नंबर सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसकी सेवाएं इस प्रकार हैं कि दुर्व्यवहार की शिकायत आप इस पर कर सकते हैं, कानूनी सलाह अगर किसी भी बुजुर्ग को लेनी हो तो इस नंबर पर आप कॉल करके ले सकते हैं। वही मानसिक परामर्श हो, स्वास्थ्य का मार्गदर्शन हो या फिर किसी अन्य सरकारी योजना की अगर आपको जानकारी लेनी तो ये नंबर बुजुर्गों के लिए है, बुजुर्गों की हेल्पलाइन के लिए है, एल्डर हेल्पलाइन नंबर इसे कहा गया है।
1: एल्डर अब्यूज के बढ़ते केसेस को देखकर भारत सरकार ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लाया था।
0: जी
1: ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कानून है वृद्ध लोगों की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए। इसके जो मुख्य प्रावधान थे वो कुछ इस प्रकार थे कि बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं, माता पिता भरण पोषण के लिए शिकायत कर सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल में आवेदन दे सकते हैं, संपत्ति लेकर अगर उनके बच्चों की देखभाल नहीं करते तो उनसे अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। सरकार ने जो है राष्ट्रीय व्योश्री योजना भी चलाई है वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए, जिसका उद्देश्य है कि जो गरीब वरिष्ठ नागरिक हैं अगर उन्हें किसी तरह के सहायक उपकरण की आवश्यकता है तो वो उन्हें प्रदान करना। सहायक उपकरण हम समझ सकते हैं कि चश्मा, वोकर, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम दांत, छड़ी इत्यादि। हम देखते हैं कि बुढ़ापे के साथ साथ बुजुर्गों को इन सब उपकरणों की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है और जो वरिष्ठ नागरिक ये अफोर्ड नहीं कर सकते वो सरकार की मदद से ये सारे उपकरण ले सकते हैं।
0: और ये कुछ चीजें थी जो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, वो सेवाएं जो सरकार बुजुर्गों को दे रही है। लेकिन सिर्फ इन चीजों से बात नहीं बनेगी, इससे आगे बढ़कर समाज को खुद एक पहल करनी होगी और उसके लिए हम कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों का, एक समाज के तौर पे जो हमारा कर्तव्य है उसे हम रहन कर सकते हैं। इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटी छोटी चीजें करनी होती हैं जिससे बुजुर्गों को अच्छा लगे। जैसे कि अपने माता पिता या फिर दादा दादी के साथ आप समय बिताइए, उनकी बातें सुनिए, उनसे बातें कीजिए, उन्हें ज्यादा बातें, आपको बस अपनी दिनचर्या बतानी होती है कि आज पिताजी मैंने ये किया, माँ आज मैंने ये किया। फिर दादा दादी के साथ बच्चे खेल सकते हैं कि उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में क्या हुआ। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने आज दिन में क्या किया।
1: हमारे श्रोता को एक बात याद रखने की जरूरत है कि बुजुर्गों को हमेशा सिर्फ पैसों की नहीं, कई बार सिर्फ समय और सम्मान की जरूरत भी होती है। तो श्रोताओं, जीवन का सबसे सुंदर रूप अनुभव है और अनुभव का सबसे बड़ा स्रोत हमारे बुजुर्ग हैं। आज विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर आइए एक संकल्प लें कि हम अपने घर, अपने परिवार और अपने समाज में हर वरिष्ठ नागरिक को सम्मान,
0: सुरक्षा,
1: अपनापन देंगे,
0: क्योंकि जिस समाज में बुजुर्ग सम्मानित होते हैं वही समाज वास्तव में सभ्य कहलाता है। तो चलिए, ये चर्चा जिसमें आज हमने जाना एक नागरिक होने के नाते, एक समाज का हिस्सा होने के नाते अपने बुजुर्गों के लिए, अपने माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं
1: और बुजुर्गों के क्या अधिकार हैं।
0: जी बिल्कुल। और इन सारी चीजों को अगर आप भी अपने आम जीवन में अमल कीजिए, आपको अगर लगता है कि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको किसी भी तरह की सरकारी मदद की आवश्यकता है तो आप अपना कदम आगे बढ़ाएं, उनकी मदद करें। अगर आपको लगता है कि उनके साथ वक्त बिताकर, उनके साथ थोड़ा मुस्कुराकर आप उनके स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, उनके अकेलेपन को दूर कर सकते हैं, तो वो कदम आप अपनी तरफ से उठाएं। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी शिकायत भी आप हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। इसी के साथ इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं और चलते चलते एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गाना हमारे प्यारे से श्रोताओं के लिए।

0: तो अभी अभी आपने सुना एक बेहद ही प्यारा सा खूबसूरत सा गाना। इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं रोजगार समाचार। तो सबसे पहले एम्स सीआरएस से फिफ्थ ग्रुप की वैकेंसी निकली है 1484। आवेदन करने की तारीख 13 जून है और अंतिम तारीख 3 जुलाई है। परीक्षा की जो तारीख है वो 25 से 27 जुलाई रहेगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th, 12th और ग्रेजुएशन मांगी गई है। साथ ही अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी। वही दूसरी वैकेंसी एसएससी सीजीएल से है, जिसमें 12,256 पद हैं। इसमें आवेदन करने की तारीख 21 मई से 22 जून तक। वही इसमें आयु 18 से 32 साल के बीच में रहेगी। आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई है। इसके साथ तीसरी जो वैकेंसी है वो यूपीएसएससी लोअर पीसीएस से निकली है, जिसमें 2,516 पद हैं। इसमें आवेदन करने की तारीख 29 मई व अंतिम तारीख 18 जून है। वही क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन और साथ ही बीईटी स्कोर 2025 भी होना अनिवार्य है। वहीं अगली वैकेंसी हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आती है। इसमें कुल पद 4,500 है। योग्यता ग्रेजुएशन है। वही डिग्री 2022 या उसके बाद प्राप्त होनी चाहिए। इसमें आपकी आयु 20 से 28 वर्ष है। स्टाइपेंड के लिए आपको 15,000 प्रति माह दिए जाएंगे। अगली वैकेंसी की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि हरियाणा कोर्ट क्लर्क रिक्वायरमेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए कुल पद 1,265 है। इसमें योग्यता ग्रेजुएशन मांगी गई है। इसमें सीमा 18 से 42 वर्ष है। आवेदन शुरू है 7 जून 2026, अंतिम तिथि 23 जून 2026 रखी गई है। इसके उपरांत हम जानेंगे धरोहर राखीगढ़ी साइट के बारे में। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने भविष्य के निर्माण का आधार अपने अतीत को बनाता है, उसी प्रकार राष्ट्र व समाज भी उज्जवल भविष्य के सपने पूरे करने के लिए अपनी अतीत रूपी जड़ों को देखता है। क्योंकि जिसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी उसका आधार भी उतना सशक्त होगा। इसलिए कहा जाता है, देयर इज नो फ्रूट विदाउट रूट्स, अर्थात जड़ विहीन पेड़ कभी फल नहीं दे सकता। सभ्यता की विकास यात्रा में कुछ बिंदु व अध्याय इतने गौरवशाली होते हैं कि उन्हें जानकर हर व्यक्ति रोमांचित होता है, जो उसे और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। उन बिंदुओं को वह जब किसी अन्य के मुंह से सुने या लिखित में पढ़े तो रोमांच की स्थितियां दुगनी हो जाती हैं। इसी तरह की गाथा का एक स्वर्णिम अध्याय है हरियाणा के हांसी स्थित राखीगढ़ी।
1: वर्तमान में हांसी जिले का एक छोटा सा गांव विश्व के उच्च कोटि के सर्वकृत विश्वविद्यालयों कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, न्यूयॉर्क, हार्वर्ड, पेरिस, वियना, सियोल व फ्रैंकफर्ट में चर्चा का विषय है। इसे लेकर इन संस्थाओं में संगोष्ठी व कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है। वहीं उनकी प्रयोगशालाओं में यहां से 6,000 वर्ष पूर्व प्राप्त पुरावशेषों, उपकरणों तथा लगभग आज से हमारे पूर्वजों के कंकालों पर शोध जारी है। राखीगढ़ी हिसार से लगभग 65 किलोमीटर तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
0: यह हांसी जिले की नारनोंद तहसील मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र लगभग 8 से 10 किलोमीटर
1: जो कि हड़प्पा

0: सभ्यता के अन्य स्थलों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व धोलावीरा से भी विस्तृत है, जिसके कारण ही इसे इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर स्वीकारा गया है तथा एशिया के 10 सर्वश्रेष्ठ पुरास्थलों में इसे मान्यता मिली है। वर्तमान में राखी शाहपुर तथा राखी खास में उत्खनन का कार्य हुआ है। इस खनन कार्य का नेतृत्व दक्कन कॉलेज पुणे के कुलपति प्रोफेसर बसंत सिंधे के नेतृत्व में जारी है। 1997 से अब तक यहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, पोलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल, ईरान, तुर्की, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया के पुरातत्व विद्वों सहित 40 देशों के विशेषज्ञों ने यहाँ शोध कर अपने लेख प्रकाशित किए हैं। राखी गढ़ी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कनिंगन की रिपोर्ट से होती है, परंतु इसको पहचान देने का कार्य सर्वप्रथम डॉक्टर सूरजभान द्वारा किया गया तथा उत्खनन का विस्तृत कार्य प्रोफेसर अमरेंद्रनाथ द्वारा किया गया, जिसके बाद वह विश्व भर में चर्चा में आ गया।
1: यह स्थान दृष्टदत्ती नदी की सहायक उपनदी के बहाव क्षेत्र में है तथा यहाँ कुल 9 टीले हैं, जिनमें से 7 प्रमुख रूप से माने जाते हैं। इनमें उत्खनन कार्य 1, 2, 3 पर सर्वाधिक हुआ है, वहीं 4 व 5 पर कम काम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ आबादी गांव बस चुके हैं। वहीं टीला नंबर 6 अन्य से थोड़ा दूरी पर है, जबकि 7 नंबर पर इस सभ्यता का कब्रिस्तान मिला है।
0: यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के तीनों कालों, प्रारंभिक, विकसित तथा उत्तर काल की जानकारी के प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। यहाँ पर प्राप्त चीजों में मोहरे, मिट्टी के बर्तन, बच्चों के खिलौने, विभिन्न प्रकार की धातुओं के मणके, कीमती पत्थर, कपास, गेहूं व खजूर हैं। इसके अतिरिक्त बर्तन पकाने का आवा, विकसित नगरीय व्यवस्था की पहचान, उच्च स्तरीय जल निकासी तथा काफी मात्रा में फियास उत्पादित करने की फैक्ट्री मिली है। यहाँ पर प्राप्त चीजें विश्व में कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता में मिस्र, मेसोपोटामिया वे चीन की हांग हो घाटी से संबंधित चीजों में मिली है,
1: जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि इन लोगों का उन सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध था। यहाँ इस सभ्यता के लोगों के डीएनए टेस्ट तथा जलवायु परिवर्तन पर आधारित है, जो भविष्य में मानव सभ्यता के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे मानवीय अस्तित्व व विकास यात्रा के बारे में नई जानकारी मिलेगी तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मार्गदर्शन मिले। तो चलिए श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने सबसे पहले चर्चा की कि किस प्रकार बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है तथा उसमें हम अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं। उसके बाद रोजगार समाचार सुने और अंत में हमने राखी गढ़ी सभ्यता के बारे में जाना। अब वक्त हो चला है इजाजत का, हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा उमंग। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती किसाना से ती। आज का विषय है बाग की देखभाल पर बागवानी किसान राहुल से आजाद सिंह की बातचीत इस कार्यक्रम में सुनवाई जाएगी, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं संदेश।
3: पता है न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
4: हाँ बिल्कुल, टेलीनॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।

0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
0: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: खेती किसाना खेती कार्यक्रम सुननिए सारे बण भाइया ने आजाद भाई की राम राम।
1: आज हम जिला फतेहबाद के गांव दयमणते शिवानी रोड पे एक ऐसे बागवान भाई से मिल रहे हैं जिन्होंने बागवानी के साथ खेती बाड़ी फ्रूट नर्सरी की अच्छी शुरुआत की है। हमारे साथ हैं प्रगतिशील बागवान श्री राहुल दैया। दैया साहब, ये शुरुआत बागवानी की शुरुआत हम आपसे जानना चाहेंगे, कब से करी, क्या योजनाएं?
2: सबसे पहले तो आजाद जी, आप श्रोताओं को हमारी प्यार भरी राम राम। और जहाँ तक बात है बागवानी की शुरुआत की, तो ये एक हरियाणा सरकार की स्कीम आई थी बागवानी बोर्ड की कि 100% सब्सिडी पे जलाशय थे, ड्रिप थी, पौधों के ऊपर भी पैसा था, अनुदान राशि थी, उस तहत हम इस स्कीम से जुड़े थे। तो हमारे को इसमें धीरे धीरे हमने शुरुआत में किन्नू लगाया, फिर अमरूद के बगीचे लगाए, तो इससे काफी प्रॉफिट हुआ और हमने अब सारी जमीनों में ही बगीचे कर दिए हैं।
1: एक एक बात पूछना चाहूंगे, आपकी बागवानी को देख के, जैसे हम हिमाचल की वादियों का दौरा कर रहे हैं, बागवानी के पौधे अमरूद में देखन लाग रहा हूँ, किन्नू है, माल्टा है, आलू बुखारा है, पपीता है और फ्रूट नर्सरी आपने तैयार कर रखी है, एक एक चीज बता दो, कितने एकड़ में बाग ला रखा है?
2: ऐसे है जी, 13 एकड़ जमीन तो मेरे पास खुद की है और 10 एकड़ जमीन हमने ली हुई है 15 साल के ठेके पे
1: जी।
2: तो हमने सारी 23 की 23 एकड़ जमीन में बाग लगा रखा है और इसके साथ साथ हमने जैसे 2 टैंक बनाए हुए हैं, इनमें मत्स्य विभाग के द्वारा हमने मछली का बीज लेके वो भी डाला हुआ है। उसके बाद हमने पोल्ट्री फार्म भी बनाया हुआ है। ये 23 एकड़ में ये और 2 एकड़ में हमारा पोल्ट्री फार्म है, 25 एकड़ की खेती है हमारी टोटल।
1: कई साल पहले शुरुआत करी?
2: शुरुआत हमने करी थी जी लगभग 15 साल पहले और हमारी शुरुआत थी 2.5 एकड़ से।
1: मन में क्यों कराई?
2: मन में तो न्यू आई जी, हमारे यहाँ पानी का कोई सोर्स नहीं था, रास्ते भी कच्चे थे, बिजली भी नहीं थी और जमीन का जो पानी है हमारा वो आज भी खारा है और उस टाइम भी खारा ही था।
1: लेकिन पौधे न्यू बता रहे हैं पानी मीठा है?
2: पौधे तो न्यू बता रहे हैं जी, हमने टैंक बनाया और टैंक बनाने के बाद ड्रिप का सहारा लिया हमने, ड्रिप से ये सारी बागवानी तैयार करी है।
1: अब ड्रिप की बात बताओ, कोई सब्सिडी मिली?
2: ड्रिप पे उस टाइम तो थी जी 100% सब्सिडी।
1: शुरुआत करते करा मान ले मन ने बाग लाना है, सब्सिडी लेनी?
2: सबसे पहले तो आप अपनी जमीन की तैयारी करो और अपना फैसला लो कि आपने लगाना के है मार्केट के हिसाब से। उसके बाद आप अपना बगीचा तैयार करो, पौधे लगाओ, फिर बागवानी बोर्ड से आप मिलके सलाह लेके टैंक बनवाओ और ड्रिप का चयन करो उसमें किसी अच्छी कंपनी का।
1: अब बात आ रही है पौधा रोपण की, पौधे लगाने की, कितने फीट गहरे गड्ढे खोदने पड़े?
2: पौधा लगाने के लिए सबसे पहले तो जी जमीन का कंप्यूटर किराया करवाना बहुत जरूरी है। उसके बाद निशानदेही निकाल के अलग अलग बाग की अलग अलग दूरियां है, आड़ू की अलग है, आलू बुखारा की अलग है, अमरूद की अलग है, किन्नू की अलग है, माल्टा की अलग है। वो निशानदेही किसी अच्छे जानकार से मिलके, अच्छे फार्मर से मिलके आप पता करके, या हमारे से भी पूछ सकते हो आप, वो गड्ढे करवाओ जी आप 2.5 फीट चौड़ा और 3 फुट गहरा, उसमें 2 तसले पुरानी गोबर की खाद मिला के गड्ढों को भर के उसमें पानी लगा दो।
1: फल कई साल में देने शुरू कर दिया?
2: फल तो ऐसा है जी, किन्नू देता है 3 से 4 साल में, अमरूद दे देता है 2 साल में, आड़ू और आलू बुखारा भी 3रे साल अच्छी पैदा दे हैं।
1: किसाक सौदा ही हो?
2: सौदा तो जी देख सको, आप 2.5 एकड़ तक कराया था, खुद की जमीन में लगा दिया और 10 एकड़ हमने 15 साल की पट्टे पे भी ले रखी है और सब इसकी देन।

0: राहुल दहिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दुयन साहब आपका भी, आप हमारे यहाँ पहुंचे और आपने मेरे से जो व्यक्तिगत जानकारियां थी या जिन चीजों का मुझे नॉलेज थी वो आपने और लोगों तक पहुंचाई, इसके लिए मैं सभी किसान भाइयों को आमंत्रित करता हूं कि बागवानी लगाने से पहले आप एक बार विजिट जरूर निकाल लें ताकि आप भविष्य में वो गलतियां ना करें जो हम जैसे फार्मर कर चुके हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसी के साथ आज का खेती किसाना से कार्यक्रम समाप्त करने की अपने भाई आजाद दुवन ने दी अनुमति, सारे वन भैया ने राम राम।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती किसाना सेती कार्यक्रम आजाद सिंह के साथ। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। अब आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम, जिसका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद।
1: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
2: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपनी इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूं कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
1: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
2: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूं तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए मैं उपलब्ध कराने में

0: बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। पीएमएवाई प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले पीएमएवाई 1 था, पीएमएवाई 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज है, यहाँ डूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो डूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो टीओडी बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रेवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रेवल कर सकेंगे। तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही है, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
0: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3.5 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में, राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर घर में शौचालय चाहिए, जहां घरों में जगह नहीं है वहां कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, सब परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें, खास करके जमीन, बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार है, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है, तो 15 साल में दुगने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना यह आबादी हो गई है, और हमें अनुमान यह है कि 2047 तक यह आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े,

0: सक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितने ज्यादा ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया। RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े। RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं। वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रेवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है। अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता हार्डली वहां की 2 भी नहीं होगी 1.5 लाख की आबादी थी। ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहां 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करने केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, ULVs को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजनाएं चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, Tier 2 Tier 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपने अपने स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को हमने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी है कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा। तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसके जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरी बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यही तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा है कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1-2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें, इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझे?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिलाकर के अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहां ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है, और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है, रेजिलियंट हाउस।

0: होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में जी मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई। हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया, और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई, और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है, और जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री, तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में दे करके उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो, तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिलाकर 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी, तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसमें इनकम भी हो जाएगी,
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो, वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था, और इंस्टीट्यूशन अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है, और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है, और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है, और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका

0: coming from government. It's coming from government support, but it is done by entrepreneurs. And we have classic examples of where good policy can create good industries in software and pharma. India exported more software than Saudi Arabia did oil because of the STPI policy in India and the H-1B policy in America. India made 60% of the world's medicines because of the 1970 Patents Act and the 1984 Hatch-Waxman Act. So I think policy can be a very powerful force for good. But finally, policy has to collide with ambitious, enchanting, and smart entrepreneurs. Fiscal and monetary policy may be overrated as a way to transform India. Government spending in India has gone up 108 times since 1990. Per capita GDP has gone up 8 times. The government used to spend about 82,000 crores in 1990. Today it spends 1,20,000 crores. So I think government spending is very important because a modern state is a welfare state. But that's not what it reduces extreme poverty. It doesn't create prosperity. And monetary policy, after a few years on the RBI board, I haven't decided whether it's a placebo or a painkiller or a steroid. It's definitely not a medicine. So what if it's not monetary policy and fiscal? It is the trust of entrepreneurs. It is giving the space to entrepreneurs to grow and putting the bad entrepreneurs in jail.
1: As always, enlightening to speak to you, Manish. Thank you so much for speaking to us.
2: In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you were listening to an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lease Services. Interviewer was Anil Padmanabhan, senior journalist. This program will also be available on our YouTube channel, News on EIR Official.
3: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारे गांव हमारी संस्कृति। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे आत्मनिर्भर महिला मनीषा से आजाद सिंह की बातचीत। लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं ये जन उपयोगी संदेश।
4: दर्शकों, खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
5: आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मारे गांव कार्यक्रम सुनिए सारे बन भैया ने, आजाद भाई की राम राम। गर्मी, बस गर्मी का तो तोड़ हो रहा है। इस गर्मी के लिए किते ना किते हम भी जुम्मेवार है। जाने अनजाने में कोई ना कोई भूल हुई, पेड़ों की कटाई करी, पराली या तूड़े में जो पतंगा दिखाया उसका परिणाम आज हम भुगतन लाग रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में खेती क्यारी पशुधन और खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खेत क्यार में सवेरे सवेरे काम धंधा निपटा लिया जा। कपास में नड़ाई का काम चल रहा है, जब भी

आप खेत में ते आवे तो एकदम घना ठंडा पानी ना पीवे, छाती जाम हो सके है। कोरे पेंडे का पानी पिया जा, नींबू पानी, दही लासी, शीत राबड़ी गर्मी ते बचाव के लिए सब ते बढ़िया चीज होया करे। दिन में जब भी घर ते बाहर जाना पड़े, सर पे अंगोछा पलना साफा जरूर रखना चाहिए।

0: ग्रामीण विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। स्वयं रोजगार के तहत ग्रामीण महिलाएं बहुत अच्छा रोजगार चला रही हैं। आज हमारे साथ हैं मनीषा जी। मनीषा जी, आप तो जानना चाहूंगे आपने किस किस चीज का प्रशिक्षण लिया और के बना रही है।
1: हमने 2 साल पहले सीखा और हमें लगा कि इससे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका गुजर बसर अच्छे से चल सकता है। इसके साथ साथ हम मशरूम का भी कर रहे हैं सर, वो भी हमने केवीके से ही ट्रेनिंग ली और उसके साथ हम गोबर गैस प्लांट भी लगा रखा है सर हमने।
0: कितनी महिलाओं ने शुरुआत की?
1: हम 10 लेडीज हैं सर। हमारा एक FPO भी बना हुआ है 300 लेडीजों का, उसमें काम कर रहे हैं हम सर।
0: अब जो गांव की महिलाएं रेडियो सुन लाग रही, वो FPO समझ नहीं पा रही के ही हो।
1: ये किसानों का ही हितैषी है सर। अच्छा। एक किस्म से
0: यानी किसानों का हितैषी। हाँ। एक ग्रुप आपने बनाया। हाँ जी। वर्मी कंपोस्ट का क्या फायदा है?
1: जैसे यूरिया डालते हैं उससे अनेक तरह की बीमारियां हो रही है, यूरिया को खत्म करके वर्मी कंपोस्ट ला रहे हैं सर अभी हम।
0: अच्छा।
1: कुछ आने वाले दिनों में यूरिया का तो सर नाम ही खत्म हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट चलेगा।
0: और जो ये आप मटर बना रहे हैं, बाजरे की कई चीजें बना रहे हैं, इनका क्या फायदा है?
1: ये सर बाजरा एक्चुअली भूलते जा रहे हैं,

0: हमारे पहले वाले पूर्व थे जो बाजरा खाते थे, हड्डियां मजबूत रहती थी, स्वस्थ रहते थे। आजकल वाले बच्चे क्या खा रहे हैं? चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा, बर्गर वगैरह। तो उनको कैसे अट्रैक्ट किया जाए कि बाजरा खाएं वो? अच्छा। तो इस वजह से बाजरे को अलग अलग तरह से प्रमोट कर रहे हैं, जैसे नमकीन बना दिए, मटर बना दिए, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों इससे, चिप्स बना दिए इस तरह से।
1: जब आपने इस काम की शुरुआत करी तो गांव की माताओं बहनों ने क्या कहा?
0: माताएं बहनें बोली कि कौन बाजरा खाता है, हम तो रोटी खा रहे हैं। अरे आप लोग तो रोटी खा रहे हैं, पर आने वाली पीढ़ी तो नहीं खा रही ना, उसको कैसे बाजरा खिलाया जाए? नए नए प्रोडक्ट बना के ही खिलाया जाए ना, इस वजह से बच्चों को काफी अच्छा भी लग रहा है सर, नमकीन मटर वगैरह।
1: यानी थोड़ा सा रास्ता परिवर्तन करा, उसमें कोई नई चीज बना के बाजरा खाया जा, हड्डी मजबूत हो, मोटा अनाज है,
0: चिप्स बनाए, वो बच्चों को बहुत पसंद आई है बाजरे के।
1: अब बेचो कहाँ?
0: ये सर स्टॉल वगैरह लग जाती है मेलों में, कुछ कृषि विज्ञान के अंदर, एग्रीकल्चर में रिफ्रेशमेंट के तौर पे, और कुछ हमारे ऑर्डर आ जाते हैं घर पे ही।
1: जैसे ऑनलाइन है आजकल तो, और सबको पता है।
0: हाँ जी, वो हमारा जीएसटी अभी हुआ नहीं था, पेंडिंग में था, अभी हो गया, अब हम ऑनलाइन भी कर देंगे सर। अच्छा। आने वाले कुछ दिनों में।
1: बहुत सी माताएं बहने पढ़ लिख के घर बैठ जा है।
0: हाँ जी,
1: क्या करना चाहिए
0: उनको? भी अपना हर तरीके के काम है सर आजकल तो, पार्लर का है, डेयरी प्लांट है, और कुछ बहुत सारे ऐसे संसाधन है जिनसे वो अपना गुजर बसर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे हैं तो ही वो नौकरी करे, नहीं, ये ग्रुप भी चला सकते। वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है सर, सिलाई की, कढ़ाई की, बुनाई की, पार्लर की, हर तरह की ट्रेनिंग मिलती है सर, और बहुत ज्यादा हेल्प करता है कृषि विज्ञान के अंदर
1: जी।
2: महिलाओं, हम जो चाहे उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना रास्ता आगे का बना सकते हैं।
1: जैसे ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ लोन की सुविधाएं भी चाहिए, तो इस तरह की सुविधाएं भी मिल जाती होंगी?
2: हाँ जी, अगर हमने SHG के ग्रुप बना रखे हैं, उनके थ्रू हम लोन ले सकते हैं,
3: सब्सिडी भी मिल जाती है।
0: हाँ जी,
1: क्या जी?
0: सब्सिडी भी मिलती है सर, जैसे आप कोई बड़ी मशीन ले रहे हो उस पे भी सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, वो भी बहुत हेल्प कर रही है सर हमारी।
1: सुनीता जी, बहुत सी चीजें जो है हमारे घर में होती हैं, जिनका सदुपयोग करके, चाहे फल सब्जी परिरक्षण, अचार मुरबा चटनी बना के हम गुजारा चला सके हैं, कढ़ाई सिलाई बुनाई, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट या मधुमक्खी पालन,
0: बहुत सारे ऐसे काम है सर जो हम कर सकते हैं,
1: और हमारा स्वास्थ्य भी तो अच्छा रह सके।
0: मेरे को 8 साल हो गए सब्जी नहीं खरीदी सर, किचन गार्डन कर रखी है मैंने, और उसी से अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि बाहर तो वहाँ कितना वो डालते हैं केमिकल वगैरह सब्जियों में, स्प्रे वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, तो क्यों ना हम अपना ही कर ले खुद घर का, तो स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा हमारा। यही है कि अपने हमने तो सर गाय भी रख रखी है, और बेचने के लिए हम भैंस भी है मेरे पास, जिसका दूध मैं डेयरी में देती हूँ, और आने वाले कुछ समय में पनीर के लिए सोच रहे हैं सर हम, ट्रेनिंग लेकर ये बड़ा प्रोजेक्ट लगाएंगे। अच्छा। क्योंकि यहाँ पनीर की डिमांड है, और आसपास कहीं भी नहीं है हमारे।
1: तो लोगों का रहन सहन खान पान कैसा है?
0: ठीक है सर हमारा तो कुल मिला के, क्योंकि गांव में स्वस्थ और रहते हैं, हवा भी ताजा है, खान पान भी सही है।
1: अब जानना चाहेंगे आपसे, गांव की माताएं बहनें बेटियां आपकी बात को रेडियो SR के माध्यम से सुन रही हैं, स्वरोजगार बारे उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे?
0: यही कि घर मत बैठो, अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा जब भी टाइम मिले, दोपहर का तो मिलता ही है सर, सुबह से आम ही होता है काम, तो मैं भी गृहिणी हूँ पता है, तो दोपहर का जो टाइम बचे कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी करनी चाहिए उनको, मेहनत करो और मेहनत का फल भी मिलता है सर, ऐसी बात नहीं है, और दोपहर का जो टाइम बचे वो चुगली चाटा छोड़कर अपना अच्छे काम करो, जो काम करोगे वो आगे बढ़ोगे और उसी का नाम होगा।
1: यही कहना चाहेंगे कि जो माताएं बहने स्वयं रोजगार का प्रशिक्षण लेके और कृषि विज्ञान केंद्र से ज्ञान लाभ प्राप्त करके ट्रेनिंग लेके काम करेंगी तो अच्छा जीवन बसर कर सके हैं। इस सब जानकारी के लिए मनीषा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का मारे गांव कार्यक्रम समाप्त करने की, अपने भाई आजाद दू अन्य दे अनुमति, सारे बन भैया ने राम राम।

फ्रॉम रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी हिसार, स्टिल आइकॉनिक, स्टिल

0: Connecting India.
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे गांव हमारी संस्कृति। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल। नमस्कार, आदाब और शुभ संध्या मेरे अजीज दोस्तों। मैं हूं आपका हमसफर, आपका राजदार और आपका अपना रेडियो दोस्त विवेक कुमार, और आप सुन रहे हैं हमारी और आपकी बेहद खास महफिल। दोस्तों, जिंदगी में रिश्ते तो बने बनाए मिलते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिसे हम खुद चुनते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो बिना किसी शर्त के धड़कता है, जिसे हम कहते हैं दोस्ती। आज की यह शाम या महफिल उन्हीं यारों के नाम है जो हमारी खामोशियों को भी पढ़ लेते हैं। तलाशू तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझे चाहेगा। जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देने वाले को ही तो दोस्त कहा जाता है। चलिए महफिल की शुरुआत करते हैं एक ऐसी गजल से जो दोस्ती की गहराई को बयां करती है, खास

सच कहा है किसी ने, दोस्त वो नहीं जो सिर्फ आपकी खुशियों में नाचे, दोस्त तो वो है जो तब हाथ थामते हैं जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है। जब दिल उदास हो और कोई रास्ता ना सूझे, तब एक दोस्त कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अबे तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। बस वो एक जुमला सारी मुश्किलें आसान कर देता है। इसी बात पर निदा फासली साहब का एक बेहद मशहूर शेर याद आता है, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, वह मिले या ना मिले हाथ बढ़ा कर देख लो। और जब हाथ बढ़ाओ तो थामने के लिए दोस्त का हाथ सबसे नजदीक होता है। आइए सुनते हैं हमारी महफिल की दूसरी बेहद चुनिंदा गजल जो दोस्ती के इस जज्बे को सलाम करती है।

आप सुन रहे हैं रेडियो दोस्त विवेक कुमार के साथ महफिल यारा। दोस्तों, दोस्ती में अगर थोड़ा सा रूठना मनाना ना हो, तो थोड़ी सी नोक झोंक ना हो, तो फिर मजा ही क्या है। वो कहते हैं ना कि दोस्त से कभी नफरत नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करते। रूठना भी उनसे जो मनाने का हुनर जानते हों, पास बैठना उनके जो दिल की बात पहचानते हों। अरे लाख कमियां होंगी मुझ में भी ऐ दोस्त, पर खुशकिस्मत है वो जो मुझे अपना मानते हों। क्यों भाई, सही कहा ना? अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो आपसे रूठा हुआ है, तो ये सही मौका है। इस महफिल के बहाने फोन उठाइए, एक मैसेज ड्रॉप कीजिए और कह दीजिए, चल यार पुरानी बातें भूल जाते हैं। आइए इसे रूठने मनाने के नाम करते हैं इस खूबसूरत गजल को।

वक्त की सुइयां थमती नहीं हैं और हमारी आज की महफिल भी अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जाने से पहले दिल की डायरी से एक और गजल आप सबके नाम करना चाहता हूँ। यह गजल उन दोस्तों के लिए जो शायद आज हमसे मीलों दूर हैं, सात समंदर पार हैं, लेकिन जब भी आंखें बंद करो वो दिल के सबसे पास होते हैं। दिलों के बीच दूरियों से दोस्ती कम नहीं होती, यादों के बिना कोई महफिल नहीं होती। भले ही वक्त ने हमें दूर कर दिया विवेक, पर पुराने दोस्तों की जगह कभी कम नहीं होती। यह गजल सीधे मेरे दिल से आप सभी प्यारे श्रोताओं और आपके प्यारे दोस्तों के नाम।

उफ, यह वक्त भी कितना जालिम है। जब अच्छे दोस्तों के साथ बैठो तो पर लगा कर उड़ जाता है। आज की महफिल यारा में बस इतना ही। उम्मीद है आपके दिल के तार इस महफिल से जरूर जुड़े होंगे। अपने दोस्तों की कद्र कीजिए, उन्हें वक्त दीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे इसी मोड़ पर, इसी समय, कुछ और नई यादों और नई गजलों के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त विवेक कुमार को दीजिए इजाजत। शब्बा खैर, शुभ रात्रि एंड टेक केयर। सायोनारा।

0: फ्रॉम रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी हिसार, स्टिल आइकॉनिक, स्टिल कनेक्टिंग इंडिया।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे योग से स्वस्थ फेफड़े और दिल की मजबूती, इस विषय पर मुकेश कुमार की बातचीत। तो आइए सुनते हैं योग पर आधारित ये बातचीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्वस्थ शरीर और शांत मन एक सुखी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और योग हमें यही अनमोल उपहार प्रदान करता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं एक प्रतिष्ठित योग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार जी हमारे बीच मौजूद हैं। योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक संतुलन और दैनिक जीवन में योग के महत्व पर अपने विचार साझा करने के लिए, तो आइए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हम हमारे आज के विशेष अतिथि का और जानते हैं कि योग किस प्रकार से हमारे जीवन को बेहतर और अधिक संतुलित बना सकता है। स्वागत है आपका हमारे आकाशवाणी हिसार के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद, आपने आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में योग विषय को लेकर के मुझे आमंत्रित किया।
0: सबसे पहले तो श्रोताओं को बताइए कि प्राणायाम है क्या और इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: योग जो शब्द है वो एक व्यापक शब्द है और योग के अंतर्गत ही प्राणायाम उसकी एक विधा है
0: जी।
1: जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, प्राण जमा आयाम, प्राणों का आयाम अर्थात प्राणों पर नियंत्रण। तो यदि हम अपने प्राण को नियंत्रित कर लें तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं
0: जी।
1: और मन को जो व्यक्ति नियंत्रित कर लेता है वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके और इंद्रिय बन सकता है। और हमारी गीता में कहा है, जिसने स्वयं का मन जीता उसने जगत को जीता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि आप मन को जीत लें तो जगत को जीतने का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाता है
0: जी। ये तो बात हुई हमारे मन की। और आज का जो ये प्रदूषण वाला समय है, हमारे आसपास इतना प्रदूषण है, तो फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम की क्या भूमिका है।
1: बिल्कुल, आपने ठीक कहा, इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, हिसार को ले लें, दिल्ली को ले लें, AQI 200-400 प्लस हो रहा है
0: जी।
1: अल्टीमेटली सारा पोल्यूशन श्वास के द्वारा अपने अंदर जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: प्राणायाम में कुछ ऐसी टेक्निक है जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, उसमें गहरा लंबा श्वास लेते हैं तो बाहर से साफ स्वच्छ प्राण वायु अपने अंदर प्रवेश करती है और जब श्वास छोड़ते हैं तो जो अनवांटेड गैसेज है उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा मात्रा में बाहर आती है, तो इससे निश्चित रूप से अपने फेफड़ों को जो है स्वास्थ्य मिलता है। साथ में कपालभाति जैसे ऐसे अभ्यास हैं जिनमें हम श्वास को झटके से ऐसे फोर्सफुली बाहर छोड़ते हैं, तो यदि किसी प्रकार के पार्टिकल भी जो फॉरेन पार्टिकल है अंदर गए हैं तो वो भी झटके के साथ बाहर आ जाते हैं, तो इससे हमारे फेफड़े
0: जी
1: स्वस्थ होते हैं।
0: मतलब हम कह सकते हैं कि प्राणायाम अगर नियमित रूप से किया जाए तो हमारे फेफड़ों की क्षमता जो है इससे बढ़ सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और कौन कौन से ऐसे प्राणायाम है जो फेफड़ों के साथ साथ हमारे हृदय के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए फेफड़े हृदय तो आपस में मिले हुए हैं, जो भी हम श्वास लेते हैं पहले फेफड़ों में जाता है
0: जी,
1: उसके बाद फिर फेफड़ों के माध्यम से हृदय जो है उसको ब्लड के अंदर मिक्स करके ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेजता है। तो कुछ प्राणायाम विशेष हैं जो हमारे फेफड़ों के साथ साथ हृदय को भी स्वस्थ कर सकते हैं, उसमें भस्त्रिका प्राणायाम है
0: जी जी,
1: जिसको लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग कहते हैं। तो आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर यदि गहरा लंबा श्वास लेते हैं, लगभग 2-3 सेकंड में श्वास लेना, लगभग इतने समय के लिए होल्ड करना और फिर छोड़ना
0: जी,
1: तो ऐसा यदि करते हैं तो इससे एक तरफ जब गहरा श्वास लेते हैं तो फेफड़ों की जो मसल्स हैं वो ऐसे स्प्रेड होती हैं, फैल

0: मिलती है,
1: बिल्कुल
0: छोड़ने से फिर सिकुड़ती है, तो इससे मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। दूसरा, ऑक्सीजन हृदय को पूरी मिलेगी तो हृदय भी इससे स्वस्थ होता है। और हृदय के जो भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो HRV है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है, चाहे हृदय की धड़कन है, कुछ प्राणायाम ऐसे भी हैं उनके करने से हमारा जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होने से हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट भी
1: जी
0: मिलता है, बॉडी कूल और काम होती है, जिससे फिर
1: बिल्कुल
0: हाई BP जैसी समस्याएं हैं उनसे भी हमें छुटकारा मिलता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, जो मेंटल पीस आज की जनरेशन चाहती है, आज के टाइम में जो लोग चाहते हैं, वो हमें हमारे सांसों को कंट्रोल करके, प्राणायाम का मतलब यही है
0: बिल्कुल
1: कि हम
0: बिल्कुल
1: हमारे सांसों को कंट्रोल कैसे करें। जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इतनी ज्ञान लाभ की जानकारी मिल रही है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर कोई व्यक्ति सालों से धूम्रपान कर रहा है तो क्या प्राणायाम उसके फेफड़ों को पुनः स्वस्थ कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कितने समय में और किस क्रम से हम उसे करें?
0: बिल्कुल, आजकल हम देखते हैं धूम्रपान का चलन अब युवाओं में बढ़ रहा है। पहले तो बड़े लोग बीड़ी आदि सिगरेट आदि पीते थे, लेकिन
1: बिल्कुल
0: आजकल हुक्का बार, हुक्का बीच में रख करके 10-20 युवाओं को हम देख सकते हैं, आम बात है।
1: जी
0: जिससे पोल्यूशन इतना ज्यादा है, हुक्का और बीड़ी पी करके यदि और हम अपना फेफड़ों को इस पोल्यूशन से भर रहे हैं तो ये अपने लिए विडंबना है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा है तो हम कुछ प्राणायाम है,
1: जी
0: जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है और जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, कुछ ऐसे विशेष प्राणायाम है उनको करके हम अपने फेफड़े जो आपके पूरी तरह से, देखिए फेफड़ों को एक बार समझना जरूरी है, फेफड़ों के अंदर 7 करोड़ से ज्यादा छोटे छोटे गुब्बारे हैं, एयर पॉकेट्स हैं, जिनके अंदर ब्लड भी होता है और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन है, छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो हम इनहेल करते हैं धुआं धूम्रपान का आदि, तो इससे हमारे जो एयर पॉकेट्स में ब्लॉक हो जाते हैं। तो जैसे हम प्राणायाम करते हैं, श्वासों को पूरा भरते हैं, सामान्य से 8-10 गुना लंबा श्वास भरते हैं, तो वो जो ब्लॉक बड़े जो एल्वोलाइज हैं, एयर पॉकेट्स हैं, वो खुलना शुरू हो जाते हैं,
1: जी
0: उनके अंदर भी ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। कपालभाति जैसे प्राणायाम करते हैं, और योग में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुंजल क्रिया है, जल नीति, रबड़ नीति है, उन क्रियाओं को करते हैं तो वो जो पॉल्यूशन सालों साल का आपके फेफड़ों में जमा है उसको बाहर में निकाला जा सकता है।
1: बिल्कुल, और हृदय की बात करें तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित हम कर सकते हैं क्या प्राणायाम के?
0: बिल्कुल, ये तो डायरेक्टली हृदय से जुड़ा हुआ है, प्राण तो सीधा जाता है हृदय में है,
1: बिल्कुल
0: फेफड़ों से फिर पूरे शरीर में फैलता है। तो अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते
1: जी
0: हैं, तो वो प्राणायाम एक ऐसा है जो हृदय को, हृदय की मांसपेशियों को, हृदय की धड़कन को, बड़े ब्लड प्रेशर को, या ब्लड प्रेशर चाहे आपका लो भी हो गया है और या फिर एंजाइना पेन है, आपको चलते हुए दर्द हो रहा है, छाती में जकड़न आपको लग रही है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो निश्चित रूप से हम अपने हृदय के स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। बहुत से शोध भी ऐसे हुए हैं कि प्राणायाम किया तो ब्लड प्रेशर अच्छा होगा, प्राणायाम किया तो आपके हृदय की धड़कन, जैसे मैंने जिक्र किया पैरासिंपैथेटिक
1: बिल्कुल
0: नर्वस सिस्टम, उसका काम यही है व्यक्ति को कूल करना और पाचन तंत्र को सुधारना। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होकर के और हमें कूल और काम करता है, तनाव दूर कर देता है, बढ़ा हुआ जो हार्ट रेट है, बढ़ा हुआ BP, उनको वो शांत कर देता है।
1: जी, तो ये तो हम सबको करना ही चाहिए। और अब बात करें अगर मैराथन धावकों की और एथलीट्स की, तो इनके लिए कौन-कौन से प्राणायाम लाभदायक हैं?
0: देखिए दौड़ने के लिए वही आपकी जो लंग्स कैपेसिटी है, आपके फेफड़ों की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। आज से लगभग हमने 15 साल पहले अपना अग्रवा मेडिकल कॉलेज के साथ हमने एक रिसर्च की थी, तो उसमें यही देखा था कि प्राणायाम का अलग अलग लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर रोज मैरी वहां अब भी हैं, कार्यरत हैं अग्रवा में, तो उसमें हमने देखा कि प्राणायाम करने से जो प्राणायाम करने वाले लोग हैं, जो अपनी योग कक्षा में प्रैक्टिशनर हैं, उनकी लंग्स कैपेसिटी, उनकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी है उन लोगों से जो दौड़ते हैं,
1: जी
0: भागते हैं, खेलते हैं, और उनकी लंग्स कैपेसिटी अच्छी है उनसे जो कुछ भी नहीं करते हैं। तो दौड़ना भागना अच्छी बात है, लेकिन प्राणायाम यदि करते हैं तो इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है
1: बिल्कुल
0: और बॉडी जो है फाइट एंड फ्लाइट मोड में, ये भी एक सिस्टम है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम,
1: जी
0: प्राणायाम करते हैं तो वो एक्टिव रहता है, तो हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं। कभी आपको दौड़ना है, कभी आपको खेलना है, कभी आपने अपने खेल में अपनी परफॉर्मेंस में सुधारना है, तो प्राणायाम करते हैं तो निश्चित रूप से जो धावक हैं चाहे एथलीट हैं उनको विशेष लाभ मिलता है। इसलिए सब एथलीट्स को मैं कहूंगा उनको अपनी
1: जरूर
0: प्रैक्टिस में
1: करना
0: प्राणायाम को
1: चाहिए
0: जरूर शामिल करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और अब जानना चाहेंगे कि एक शुरुआती व्यक्ति को स्वस्थ फेफड़ों के लिए रोजाना कितने मिनट और कौन-कौन से प्राणायाम करने चाहिए?
0: हाँ, बहुत जरूरी है कि हम योग की शुरुआत प्राणायाम से करें, खासकर
1: बिल्कुल
0: जो बिगिनर्स हैं,
1: जी
0: क्योंकि प्राणायाम तो क्या है, बैठ कर भी आप कर सकते हैं, जो व्यक्ति चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, तो बिगिनर्स प्राणायाम से अपना शुरुआत करें। तो प्राणायाम में सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठें, किसी भी
1: जी
0: ध्यानात्मक आसन में, साफ स्वच्छ जगह होनी चाहिए, आपके नीचे योगा मैट या कोई भी

0: कंबल, दरी, चद्दर, चटाई होनी चाहिए, कंफर्टेबल आपके क्लोथ्स होने चाहिए। तो आप आंखें बंद करके बैठें सबसे पहले, और सबसे पहले व्यक्ति को शुरू करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम से, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग।
1: जी
0: आप बैठे आराम से, आंखें बंद करके, मुंह बंद करके, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें, कुछ देर के लिए रोकें, फिर छोड़ें। इसी रिपीट करेंगे 3 से 5 मिनट।
1: जी
0: गर्मी में थोड़ा सा कम करें, सर्दी में इसको थोड़ा बढ़ा के कर सकते हैं। इसकी स्पीड को भी कम ज्यादा किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। फिर आप पाचन तंत्र को ठीक करना है तो आप कपालभाति प्राणायाम करें, श्वास को झटके से बाहर छोड़ें 1 सेकंड में एक बार। ये स्पीड सबसे अच्छी मानी जाती है,
1: जी
0: तो इससे आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा, वेगस नर्व आपकी एक्टिव रहेगी कपालभाति करने से। तो उससे क्या होगा, फिर हमारा श्वसन तंत्र, रक्त संचरण तंत्र और पाचन तंत्र, तीनों का बैलेंस आपस में ठीक से बना रहता है।
1: जी
0: फिर
1: जी
0: अनुलोम विलोम करें, उससे आपका माइंड ठीक रहेगा, आपकी आपका नींद ठीक रहेगी, आपका स्वभाव अच्छा बना रहेगा, आपकी जितना भी नर्वस सिस्टम हमारा वो सब अच्छा बना रहेगा।
1: जी
0: ऐसे भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो इससे भ्रामरी करने से हम कूल एंड काम रहेंगे। उज्जयी प्राणायाम करेंगे, इससे हमारा जो श्वास की नली है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ऐसे प्राणायाम करेंगे तो हमारा 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ऊर्जा से भर जाएगा। ऐसे 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा नर्वस सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी ट्रैक है, ये ऊर्जा से भर जाएगा। और ऐसे 37 ट्रिलियन सेल्स, 37 खरब कोशिकाएं एक व्यक्ति के शरीर में, हर कोशिका में पर सेकंड में 1 लाख से ज्यादा क्रियाएं हो रही है। तो जब प्राणायाम करेंगे हम ये सिंपल प्राणायाम, तो 37 ट्रिलियन सेल्स वो भी दिव्य ऊर्जा से भर जाती है। इसलिए सबको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य, उज्जयी, ये सब जो हल्के फुल्के और आसान प्राणायाम, इनसे अपने
1: जी
0: योग सत्र की शुरुआत करनी चाहिए।
1: जी अभी आपने बात की, एक प्राणायाम है सर्दी में ज्यादा गर्मी में कम करना चाहिए, तो अब मेरा यही प्रश्न है कि क्या सर्दी और गर्मी में प्राणायाम की विधि और समय बदलने चाहिए, और फेफड़ों पर तापमान का क्या असर पड़ता है?
0: बिल्कुल, देखिए जब भी ठंड का मौसम आता है तो शरीर सिकुड़ता है, तो ऐसे हमारी फूड पाइप से लेकर के हमारी जो हम श्वास लेते हैं श्वसन नली, ये सब में शरीर में सिकुड़न तो आती है।
1: जी
0: तो गर्मियों में तो बहुत हमें आराम से प्राणायाम करना चाहिए, सामान्य गति से, मंद गति से, क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा हीट होती है
1: बिल्कुल
0: और बॉडी जब भी कोई वर्कआउट करती है तो उसमें हीट एक्सेस हो जाती है। तो इसलिए गर्मियों में सबको मैं कहूंगा कि प्राणायाम को बहुत आराम से करें, भस्त्रिका प्राणायाम हो, कपालभाति हो, अनुलोम विलोम, बहुत आराम से करें, जल्दबाजी ना करें। सर्दियों में क्योंकि हमें हीट की आवश्यकता होती है, तो हम इसी इन्हीं प्राणायाम की गति को शक्ति के साथ कर सकते हैं।
1: जी
0: जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, वैसे तो मैंने बताया कि 2 से 3 सेकंड में आप श्वास को भरें और छोड़ें, लेकिन सर्दी में ऐसे स्पीड
1: जल्दी
0: को,
1: जल्दी कर सकते हैं।
0: ऐसे कपालभाति की स्पीड को बढ़ाकर करेंगे तो बॉडी में जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हीट थोड़ी सी आएगी, तो सर्दी के रोगों से भी हम बचे रहेंगे। और जो भी सर्दी में हम अच्छा खान पान लेते हैं वो भी ठीक से डाइजेस्ट होगा।
1: जी जी जी
0: तो गर्मी और सर्दी में थोड़ा सा हमें विधि में भी थोड़ा सा अंतर रखना। प्राणायाम भी अलग अलग है गर्मी सर्दी के। गर्मी में शीतली शीतकारी प्राणायाम है,
1: जी
0: वो शीतलता देते हैं, वो गर्मी को दूर करते हैं, मुंह के छाले से लेकर के बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं, पसीने में बदबू है, फिर कई बच्चों को नकसीर की समस्या है, हाथ पांव में
1: बिल्कुल
0: बहुत जलन रहती है, हाथ पांव गीले रहते हैं पसीने से, तो ये जितनी समस्याएं गर्मी की हैं वो शीतली शीतकारी प्राणायाम को हम गर्मी में ऐड करवा देते हैं विशेष रूप से। ऐसे सर्दी में हम सूर्य वेदी, ऐसे कुछ विशेष और प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम थोड़ा ज्यादा मात्रा में करवाते हैं, तो इनसे फिर मतलब हीट अपनी मेंटेन रहती है।
1: जी अब हमें एक बात और बताइए कि अगर 60 साल की किसी व्यक्ति को हृदय रोग है, और हृदय रोगी को हम सिर्फ एक ही प्राणायाम बताना चाहें, तो वो कौन सा प्राणायाम होगा?
0: हृदय रोगी को या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको नर्वस सिस्टम संबंधी समस्या है, तो उसको मैं अपनी तरफ से सलाह दूंगा अनुलोम विलोम प्राणायाम उनको करना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि अनुलोम विलोम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो वात पित्त कफ तीनों को
1: तीनों
0: ही
1: को कंट्रोल
0: बैलेंस
1: करता
0: करता
1: है।
0: है। और इसमें बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है, हर व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है। आप खड़े होकर इस प्राणायाम को कर सकते हैं, आप खड़े नहीं
1: जी
0: हो सकते तो कुर्सी पर बैठ कर आप कर सकते हो, आप बैठ भी नहीं पा रहे हैं तो आप बेड रिडन हैं तो लेट कर भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। उस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम,
1: जी
0: इसको अल्टरनेटिव ब्रीदिंग भी कहते हैं।
1: इसे हर एज में कर सकते
0: हर
1: हैं,
0: एज में इसको
1: वृद्ध
0: किया जा
1: भी कर
0: सकता है,
1: सकते हैं, बालक भी कर सकते
0: बालक भी कर
1: हैं।
0: सकते हैं, बच्चे इसको
1: जी
0: करेंगे तो उनकी मेमोरी शार्प होगी,
1: बिल्कुल
0: युवा करेंगे तो उनके अंदर क्रिएटिविटी और ये सब पैदा होंगे और बुजुर्ग करेंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी,
1: हेल्थ
0: विशेषकर
1: अच्छी होगी।
0: कार्डियक हेल्थ।
1: चलते चलते बस एक ही प्रश्न और हम आपसे करना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को कोई एक ऐसा सरल सा प्राणायाम अभ्यास बताइए जो प्रतिदिन आसानी से कर सके, अपने काम के साथ अगर किसी के पास समय नहीं है तो भी वो उसको अच्छे से कर सके।
0: मैं एक नहीं आपको दो प्राणायाम बताऊंगा जो हम
1: जी
0: काम के साथ साथ कर सकते हैं।

0: एक तो भस्त्रिका का प्राणायाम, आप चाहे सैर कर रहे हैं, आप चाहे कुछ घर में गृहिणी है काम कर रही हैं, युवा है अपना कहीं अपना जा रहे हैं आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं कहीं बैठे हुए हैं, तो लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग तो हर व्यक्ति हर समय कर सकता है। उसके लिए कुछ ऐसा भी परहेज नहीं कि खाली पेट होना चाहिए
1: बिल्कुल।
0: या अब नहीं करना है, ब्रीदिंग तो हम कर ही रहे हैं, उसको थोड़ा सा लॉन्ग और डीप कर दें।
2: अभी आप सुन रहे थे योग से स्वस्थ फेफड़े और दिल की मजबूती। बातचीत कर रहे थे मुकेश कुमार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार, जिसका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रमुख क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एविन्यों शहर आज रात से शुरू होने वाली G20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमेरिका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।

0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
2: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हसर बनने के लिए AFCAB 2F 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.telly-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में

0: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के

0: नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्दे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्दे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: Prime Minister Modi said the two sides also signed the memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
2: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर MOU की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर MOU को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
1: स्पीकिंग ऑन द ओकेजन

आपकी परछाइयां इस फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज, राजा महदेली खां के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

राजा जानी फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

धरती कहे पुकार की आप सुन रहे थे। इस फिल्म में मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।

0: एन दत्ता की तर्ज थी सहल उद्यानवी का लिखाई गीत। आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म धर्मपुत्र से। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया था धरती कहे पुकार के। इस फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

लक्ष्मी बख्शी का लिखा ये गीत आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, चरस फिल्म का ये नगमा था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें आप

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो हैं आज की फनकार।

0: रहते हैं।
1: वो पास रहें या दूर रहें, उनकी आवाज जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है।
0: दिल नादान तुझे
1: गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की।
0: मन मोर हुआ मतवा।

सुरैया बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।

0: एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रही।
1: मैं

कहा जाता है देवानंद ने सुरैया को टूट कर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्मरण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ, मैंने उन्हें प्यार किया था, इसे मैं अपने जीवन का मासूम

सुरैया की आवाज में जहाँ एक तरफ दर्द है वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है सुनिए।

जब देवानंद की फिल्म अफसर बन रही थी तो सचिन देव बर्मन ने सुरैया के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एस डी बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सबके लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

0: सुरैया विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी सुनिए।
1: 1952 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पैक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पैक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पैक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी मगर जब नींद टूटी तो ये हक

सुरैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, दलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए।

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात ये है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली ये

संगीतकार नौशाद ने जब अपनी शास्त्रीय शैली को छोड़कर बनाया बिल्कुल मॉडर्न गाना, तो उसे गाया मोहम्मद रफी और सुरैया ने।

0: रस्ते में।
1: सन 1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साए में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उनका

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार शुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो हिसार।
1: बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में एचआईवी और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एचआईवी और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, एचआईवी और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में एचआईवी और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी आईसीटीसी केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में

0: फ्रॉम रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी हिसार, स्टिल आइकॉनिक, स्टिल कनेक्टिंग इंडिया।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार।

0: श्रोताओं, हेलो हिसार में गीतों की बहार लेकर हम फिर हाजिर हैं आपके लिए। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी ऋतु कौशिक।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, हेलो हिसार में स्वागत है आपका। नाम बता दीजिए।
1: जी यश कुमार बात कर रहा हूं मैम।
0: कहां से बोल रहे हैं यश जी?
1: जामनगर गुजरात से मैम।
0: अच्छा, क्या करते हैं वहां पे?
1: जी यहाँ तो मैम कंपनी में जॉब करते हैं मैम।
0: अच्छा, पहली बार फोन किया आपने?
1: जी जी जी मैम
0: जी, हमें लग रहा था। बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हेलो हिसार आकाशवाणी हिसार में आपका।
1: धन्यवाद मैम।
0: तो यश यश जी, यहाँ के प्रोग्राम सुने हैं आपने कभी?
1: जी जी मैम। हेलो,
0: बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज हेलो हिसार में?
1: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा मैम बंजारन का, कब आएगा मेरे बंजारे।
0: जी

0: हेलो, नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत हेलो हिसार में आपका। परिचय जान सकती हूँ आपका?
0: खानाराम बात कर रहा हूँ, शास्त्री नगर हिसार से। मैं
1: जी, कैसे हैं आप और क्या काम काज करते हैं?
0: तो कुछ नहीं करता, मैं घर पे रहता हूँ।
1: अच्छा, तो घर पे कैसे आपका जो भी टाइम होता है उसमें क्या करना पसंद करते हैं?
0: बस मैं ब्लाइंड व्यक्ति हूँ जी।
1: अच्छा, तो गीत सुनना शौक है आपका, है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: किस तरह के गाने सुनते हैं, पुराने नए कौन से अच्छे लगते हैं?
0: मैं पुराने गाने सुनना पसंद करता हूँ।
1: आज बता दीजिए कौन सी फरमाइश है।
0: आप कौन बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम रितु कौशिक है।

0: जी। अच्छा, कई दिन है, कई दिन हो गए, आपकी आवाज पहचानने में भी नहीं आई आज तो
1: अच्छा
0: मेरे को। दीदी मैं सुन रहा हूँ, फिल्म का गीत सुनवा दीजिए। मैंने पहले भी कोशिश करी थी लेकिन मैं सुन नहीं पाया।
1: कौन सा गीत है?
0: मुझको ठंड लग रही है, मुझे दूर तू ना जा।
1: गर्मी में ठंड लगने वाला गाना सुनेंगे आप?
0: हाँ
1: चलिए।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, स्वागत है लोहिसार में। कौन बोल रहे हैं?
0: ठीक चंद अग्रवाल बोल रहा हूँ, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
1: अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पे?
0: मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ मैडम।
1: अच्छा, तो कब से सुन रहे हैं रेडियो?
0: रेडियो तो मैडम आज लगभग 50 से 55 वर्ष हो गए।
1: क्या बात है, तो 50-55 साल से सुन रहे हैं आप। कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो बहुत प्रभावित करते हैं आपको?
0: मैडम पहले तो ऐसा था कि आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते थे।
1: अच्छा,
0: और अभी जो है हेलो फरमाइश सबसे अच्छा लगता है
1: जी। तो पहले के दौर में और आज के टाइम में क्या फर्क महसूस करते हैं आप?
0: मैडम पहले के दौर में ऐसा था कि ये सुनने के सीमित साधन थे
1: जी,
0: और आज के दौर में यह है कि हर हाथ में एक रेडियो है, कहना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: आप ऐप के माध्यम से जो है मोबाइल के द्वारा और सारे मतलब जगह के कार्यक्रम में आप उसमें भाग ले सकते हैं, उनको सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये एक सुविधा हो गई है।
1: जी बताइए, आज हेलो हिसार में कौन सा गीत सुनने के लिए आपने कॉल किया है?
0: मुझे हिमालय की गोद का सुनवा दीजिएगा।
1: कौन सा गाना?
0: चांद सी महबूबा हो मेरी।
1: बहुत खूबसूरत गीत की फरमाइश की आपने, भेज रहे हैं आपको।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी। हेलो सर से हम बात कर रहे हैं, आप बताइए नाम अपना।
1: कौशिक मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं जबलपुर एमपी से अशोक कर रहा।
0: अशोक सिंह जी। जी, रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं आप, है ना।
1: जी मैडम जी। हाँ सब अच्छा है। थोड़ी बारिश हुई थी मगर कम हुई, मगर धूप है तेज बढ़ रही। चालीस
0: जी, बता
1: के
0: दीजिए।
1: अंदर चल रहा है तो जो धूम गर्मी का मजा ले रहे हैं और रिटायरमेंट का। गाना
0: सही बात है, दोनों चीजों का आनंद।
1: सुनवा दीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा सुनेंगे।
1: सरस्वती चंद्र के चूड़िया खनकी खनकाने वाले आ गए, लता जी की आवाज।
0: ठीक है अशोक सिंह जी, आपकी फरमाइश पर हम भेज रहे हैं हेलो हिसार में ये गीत, और
1: बहुत
0: ऐसे
1: बहुत
0: ही
1: धन्यवाद।
0: कॉल करते
1: नमस्कार
0: रहिएगा
1: नमस्कार।
0: हमें। नमस्कार।

0: मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार सर, नाम बताइए।
0: मैडम जी, चकला बाजार समाणा शहर जिला पटियाला पंजाब से पप्पू राजा खुश दिल जी।
1: जी पप्पू राजा जी, कैसे कैसे हैं आप? काम कैसा चल रहा है आपका?
0: मैडम जी बहुत अच्छे, आकाशवाणी हिसार के प्रोग्राम सुनते रहते हैं और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं जी।
1: चलिए ये अच्छी बात है, आप जब इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं कि आकाशवाणी हिसार के प्रोग्राम आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमें बहुत बहुत खुशी होती है।
0: हाँ जी
1: तो
0: मैडम जी,
1: पप्पू राजा जी, आज कौन सा गीत है जो सुनना चाह रहे हैं आप,
0: मैडम जी हमारे परिवार के कुछ नाम हो रहे हैं जी। हमारे
1: बताइए।
0: पापा जी हैं शेर परसोत्तम दास खुशदिल जी चकला बाजार समाणा से, शंकर शंभू खुशदिल हसमुख लाल जिंदल, पप्पू अनमोल खुशदिल, और हमारी बहुत सुंदर पत्नी हैं संगीता रानी जिंदल चकला बाजार समाणा जिला पटियाला पंजाब।
1: जी, हमेशा अपनी पत्नी की तारीफ करते हैं आप, ये बड़ी अच्छी
0: हाँ जी
1: बात
0: मैडम
1: है।
0: जी, बहुत अच्छी है जी, हमारा बहुत ख्याल रखती है जी।
1: जी। और एक ये खुशदिल जो आप लगाते हैं अपने नाम के आगे, क्या
0: हाँ
1: ये
0: मैडम जी, क्योंकि
1: उपनाम है या?
0: हाँ जी नाम ऐसे है मैडम जी, अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, उससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है जी।
1: जी, इसलिए आपने नाम के आगे ही लगा रखा है।
0: हाँ जी मैडम जी,
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात ये हमें पता चली आज। तो पप्पू राजा जी, आप फरमाइश जान लें आपकी।
0: मैडम जी गाना आप सुनवा दो गाइड फिल्म का, तेरे
1: कौन सा?
0: मेरे सपने अब एक रंग हैं।
1: ठीक है, भेजें पप्पू राजा जी, आपकी फरमाइश आप तक।
0: मैडम जी हम आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करते हैं जी।
1: धन्यवाद आप सभी का कि आप इतनी गंभीरता से और इतनी तन्मयता से हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत शुक्रिया।

0: हेलो, नमस्कार बहन जी।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
0: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से बहन जी आपका भाई
1: मांगे
0: मांगीलाल
1: लाल
0: सर
1: चंदेल
0: बोल
1: जी, पहचान गए हम, थोड़ी
0: रहे
1: देर लगी
0: हैं।
1: हमें।
0: हाँ बहन जी, पहचान
1: और
0: लिया आपने।
1: बताइए मांगीलाल जी, कैसे हैं आप?
0: बस
1: मौसम
0: बढ़िया
1: कैसा
0: है
1: है
0: बहन
1: उधर?
0: जी। मौसम आज सुबह से ही बदल हुआ है, आसमान में काले काले बदल छाए हुए हैं
1: जी
0: और मौसम बढ़िया सुहावना हो रहा है।
1: जी
0: मतलब
1: बिल्कुल। और इस छुपती जलती गर्मी में तो सुहावना मौसम ही राहत देता है ना?
0: जी, सही है बहन जी। भयंकर गर्मी जीत गई, अभी 4-5 रोज से तो ऐसी गर्मी पड़ रही थी भयंकर,
1: जी
0: और आज कुछ ऐसा लग रहा है मौसम बिल्कुल ठंडा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आसमान में काली काली बदली है, बढ़िया सुहावना मौसम हो रहा है।
1: जी और मांगेलाल जी, मौसम का प्रभाव हम सब पर होता है। देखिए, जैसे ही ठंडी हवाएं चलती हैं, बादल छाने लगते हैं, तो हमारा
0: सही है
1: मन भी
0: बहन
1: अंदर से खुश हो जाता है ना? बताइए, आज
0: सही
1: कौन सा
0: है।
1: गीत सुनेंगे?
0: फिल्म संजोग का सुनवा दीजिए,
1: कौन सा गाना?
0: बदली से निकला है चांद, परदेसी की
1: बहुत खूबसूरत गीत भेज रहे हैं आप तक मांगेलाल जी। सुनते रहिए ऐसे ही आकाशवाणी के
0: जी।
1: साथ।

0: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो हिसार में।
0: आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है जब फोन लगा मैडम।
1: हमसे बात हो रही है आपकी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं आप?
0: मैं HCL में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में नौकरी करता हूँ। ड्यूटी पीरियड में कार्यक्रम में फोन करता हूँ। आज मैं दो चार दिन से नहीं जा पाया मैडम, क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं मिल पाया था, तो एकदम वो थोड़ा सा वही परेशानी था।
1: अच्छा, पानी की किल्लत है उधर।
0: जी मैडम, आज थोड़ा सा वो शिकायत विकायत दिए हैं तो थोड़ा सा मिला है। कल परसों के बीच में सुधर जाएगा, क्योंकि नदी में पानी रहता है ना मैडम, तो फुटबॉल में क्या पानी कम रहता है तो पानी कम मिलता है,
1: बिल्कुल
0: तो वो इसीलिए थोड़ा सा बरसात आ जाएगा तो पानी अब लबालब मिलेगा।
1: जी। बता दीजिए आज के प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म का नाम है सर, और गीत की बोले सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन, गायक कुमार सन। और सबसे पहले गीत आपको के निर्देशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी हिसार में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवार जन को, रिश्तेदारों को, अपनी श्रेणियों को, आकाशवाणी हिसार में जुड़े सभी उद्घोषक भाई बहनों, स्टाफ कर्मचारियों को, पूरे भारत श्रोता को, हेलो एक्टर रेडियो ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को।

0: हेलो हिसार
1: बिल्कुल, हेलो हिसार से बात कर रहे हैं। आप बताइए कौन बोल रहे हैं।
0: जी। नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
0: मैं सज्जन कुमार जांगड़ा बात कर रहा हूँ, गांव नलोई से जी।
1: जी, आवाज तो पहचान गए थे आपकी, लेकिन रस्म है,
0: धन्यवाद।
1: नाम पूछना पड़ता है। और बताइए सज्जन जी, कैसे हैं आप।
0: बिल्कुल कुशल मंगल है रितु जी, और आशा करते हैं कि पूरा आकाशवाणी परिवार बहुत कुशल मंगल होगा।
1: जी बिल्कुल, सब बढ़िया है। और कैसे चल रहे हैं प्रोग्राम, आप सुन रहे हैं लगातार, हमें पता है।
0: प्रोग्राम में बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। सबसे पहले तो संक्षेप में मैं मेरी बात रखना चाहूंगा कि 8 जून 1936 को जो एक पौधा लगाया था ऑल इंडिया रेडियो के नाम
1: जी
0: से,
1: जी
0: वो
1: जी
0: आज इतना बड़ा हो गया है कि 90 वर्ष अपने पूरे करने जा रहा है, हो गए
1: बिल्कुल
0: मतलब।
1: बिल्कुल, हो गया है।
0: तो इतनी बड़ी खुशी की बात है कि देखो, एक छोटे से एक केंद्र से स्टार्ट होकर के आज लगभग 600 स्टेशन आकाशवाणी के देश पूरे देश में खुले हुए हैं,
1: जी
0: और इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम जो है हम तक पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बधाई खुशी सभी श्रोताओं को और पूरी आकाशवाणी की टीम को।
1: जी,
0: मैं
1: आप भी इन चीजों के पात्र हैं। हमारे जो श्रोता हैं बराबर का हिस्सा रखते हैं इस भागीदारी में, इस खुशी में। तो
0: आकाशवाणी के जो 90 वर्ष पूरे हुए, इसके खुशी में देखो हर स्टेशन पे कहीं पे मैराथन का है, सांस्कृतिक प्रोग्रामों का इतना बढ़िया बढ़िया आयोजन चल
1: जी
0: ही रहा है,
1: बिल्कुल।
0: पूरा नहीं हुआ, चल ही रहा है। काफी जगह जगह श्रोताओं के से बातचीत होती है, बताते हैं कि वहां पे था वहां पे था, तो बहुत अच्छा है ये भी मैम।
1: बिल्कुल। तो सज्जन जी, आज के प्रोग्राम में गीत की फरमाइश आपकी।
0: मैम हम तो हमारी फरमाइशी तो देखो चलती रहती है, वो कभी पूरी होने वाले नहीं है। मैं चाहूंगा आज आपकी पसंद का कोई गाना सुने।
1: अच्छा, चलिए आज हम आपको अपनी पसंद का गाना भेज रहे हैं, और ऐसे ही सुनते रहिए और ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। आपने
0: जी
1: फोन
0: जरूर।
1: किया
0: और
1: इसलिए।
0: आकाशवाणी से जो अपना इशार से जो नमस्ते इशार प्रोग्राम आ रहा है, वो तो इतना बढ़िया प्रोग्राम है मैम कि इतनी नेशनल जो खबरें होती हैं, राष्ट्रीय खबरें हैं, वो तो हम जैसे कि दिल्ली से है या अदर
1: जी
0: स्टेशन से हमको पूरे मिलती ही मिलती हैं। जो क्षेत्रीय खबरें होती हैं वो उसका एक आकाशवाणी इशार का जो एक प्रयास है नमस्ते इशार के थ्रू, इतना बढ़िया वो है कि
1: जी
0: कुछ कहें जो भी बोलेंगे कम ही रहेगा। एक छोटे से गांव की खबर भी हम तक आकाशवाणी हिसार से ही मिल रही है।
1: जी बहुत प्रयास रहता है हमारा कि हर तरह की चीजों को हम इसमें समावेश करें, और जब आप लोग प्रतिक्रिया देते हैं तो हमें लगता है कि हम सफल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया।
0: धन्यवाद
1: सुनिए
0: मैम।
1: अपनी पसंद का गीत।

0: आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे पवन कुमार, तकनीकी सहयोग रहा अमर सिंह सिहाग का। ऐसे ही आपके मनपसंद तराने लेकर हम आते रहेंगे आपके लिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले

0: नहीं तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

इस गीत से पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनर्प्रसारण एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: बागेश्वरी में गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का आंध्र प्रदेश चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप H में स्पेन और